ताबिख्रे इलांगबम नवीनचंद्र की मयक्ता श्रुति संगम की सही सकपा सिंह नसकपा इमाले बाग पुखुरुम जबे सही मधंग दमुक ताबिरसी वांगो आर्टिस्ट एसोसिएशन की सही सकलोई सिंह नसकपा लाइस्रम शांति बला देवी ना सही रेंगबा इमाले बाग पुखुरुम जबे सही

आकाशवाणी इम्फाल हौजे यू के पुंग नेपाल तारे संदोकचरी खोन नाहरोल की खोंजेल

हौसिक अमुक पुंजा अस्तमत मिसै मका खुदोल तमजरी थिंग बाई जम बिपिन चंद्र न सकपनी अंगोम चाचिंग खैना सेरिंग बिसैनी ताबिरसी।

마탕다 항주리버 와집 메세사시 공부대기 까난발라 마루바시나 타비락바니 마루바시나 타비닝바 마룹싱기 밍수 하피레이 마룹싱디 실파리 밤 밤온 레카이 닝템바 라이스람 통주 산디아라니 탕잠 사골 산디아라니 탕잠 사골반 चंचन नोमई कापम हौरीबी नौरिम गीता सगोलमांग अमदि रेडियो ताबिरिब पमनम कतामि नचिक हैदुने इबिरे अदुगा मयाम पुन तामि ननि लिब इसे यसिना खुचा अनि फिल्म सिदगी अमरजीत मदि सुस्मिता अनि पुन सखमिनवा खाइदेम इमो न सेरिंग बमदि अमरजीत लौरेम बमना सेरांग बे से यसिनी इसे थाजरी ताबिरसी

आकाशवाणी इम्फाल की मेगार्स चामगा हम दस मगा दस संदोकचरी बा एफएम संगाई चैनल देखनी अदम न थोरम ताबिरी बसे हाउसे पुंगफा मस्त संदोकचरी रेडियो लीला नसीदी इमानु आयरे लीलाई बा अरिबम शरद चंद्र शर्मा लीला पुथोकपा अधिकारी मयूम गीत चंद्र शर्मा मदी पुथोकपा तेंग बांग बा अथोकपम सुभाष चंद्र सिंह हाउसे लेजरे रेडियो लीला नसीदी इमा नुआरी

0: अनिले नाई खुक पक्ष त चले दु कदे वन नंबो से लाओ स्वाय दंग आ फंगकी से
1: फंगकी से हायरो जिपो
0: आ फंगकी से आइसे नंगोन द कैनोम त हंगे न खन बसे कुइरे बने
1: असु कुइ बसे हंग दु न त ला असि द करि मुले मौरी के करि
0: वा दि के ब अतै न ते द नंगी मिंग सिना अनिले न कौरि सिबो
1: अदुगी वोइरे
0: मानी
1: वोइरे आइदि करी करी गो वोरो वइनि गोरे आ एकुइ सिलिनाउ से नुपी गाता अहुनि
0: दना
1: अदुदा मिंग थोन फम खंग ददना अमा लैदगिना अहुम लै फाव बसुम थोलक बदा आइना अनि सुबनि
0: दना
1: अदुदा अनि लै न थोलिबा फजद्रो
0: या फजी
1: अदो आइसु वसादा महंगनिङे हंगे को
0: हंगु कइनु
1: वजागी मिंग अतांग बने कौरी से अतांग बहाई बसी दी मतंद पोक पद कौन नहीं देना वजागी दी इनाम रूपा मसुले अदु कमाए अतांग बतोली नो बा
0: नीले मधु आदो हो तुरानो
1: है मा कई नो खंग साउ साउ रे इधु बो अदु हंग बबु करी काई की
0: अदु वेरा सु अमो नांग कर
1: करी की नो बा मिंग हंग बद बो अदु क्या साउ नो ब्रो साउ बोगी मरम मम्मा दिले रंग गनी मरम दो हाइद्र सु साउबगी दि हाइदब यार हाइद्र गदि ओजान एबु नुसिबिरि बदो असिंग बनते असिंग बनुम सिब वइरेदि नुसिबि अमगे मफम दबो करियमु अरोन ब थम निबगे
0: अरिले आइना हराउ मिनुक तम जबसिदि नंगि नाक्त लाख लाख द तम जबने स्कूल हे खलु पगा नंगि नाक्त लाख पदा अवानु माय कया लोछ लगा नुमाय बस फादुना हराव मिनोक चब लाग पने
1: उसा
0: खंग दिया निले ए युम दुदा चुक दही लेनिंग थी
1: उसा ना युम दुदा लेनिंग रिपा की मरम दो आयां खंग निंगे बा से दायो बा
0: नसी आयने नंगी नपम दा तम दोरी बो वारी से आय आय पुंची इसदा कनागी पम अम दा तम दरी
1: उसा
0: मतम दो आय से ही अहम मरी मुख फ्रम लगाने वकल खर खर दी लाभ मतम ने यूं तो दसु इमा इबाने तो नहीं लेरी बा ऐ दी इपासों से कहाँ होते
1: कई नो हाय दबो नना उन्हों पा तो उन्हें लेरी तो दी
0: मधु इमरो में नसीब हो बा ऐ ने इमा बु वारो उड़ी बसे
1: ओ जाना इमा बु वारो बगी मरम तो ने ऐ ने हम न कहने इस अमुक्त हायो बा
0: लेकाई में याम नदी मैं एक शेन खंग बा हाय बस सुनत तब बाबा ने किरो मतुंग दनी हाय सही अनि मुख सुरगा एक कोई बम सास है एक कोई युम तो पुरा की बने हाय खंग दे नीले ऐना नंगी न पंडा हाजे का दबाह बाबू नंग ना इबु इमु मतुंग अमुक्त दी नुआई मिनोक तो तमंदुना ऐ बोम तले हंबियो
1: उसा के इमंग देदा ऐ न करी न तेंग पांग दुना वजा बनु नुआई बा मिनोक तमन बंगम ग तोरी बन
0: नंग गने नंग न युम तो दले रबा मतम दा सोय न नंगम गने
1: सा
0: खंदे मसिदी नंग ऐ युम तो दा चलसि
1: हा
0: नंग इनु सिबना ऐ बो इमंग देदा अमत दी इंग न सिग्न लेबा गदो गमरा मत दी हेंगे
1: अदुरो आइन पांगदब ओसागी मते अदुदि ओजाना हाइबिरक तेना गाइजरक पकुइरबनी आइ तमांग थाजरगी

मखल मथल की थरों कया मसंदुक न तहन जरी बसी FM संगाई चुनल दिगिनी आकाशवाणी इम्फाल हौजी नुमीदोंग बपुंग तरानी थोई तारे मणिपुरी द पाओ ताबिरसी।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून लाइबक थी बनी फोन असु तत् खरे अखोगी थमजरीब टेलीफोन नंबर से मैं मफम दम तंगजगे 879-880-3293 फोन हेलो हेलो हेलो गुड आफ्टरनून लेडीज की थोड़ा नहीं कना होबीरबनो मिंग लेफम तकपियो अखोगी फोन लाइन से खर खजिकत नुगजदब हैजब तारेको फोन से लाग पाखचर फोन से पत पत तत्प तौरे मखाताब अखोगी थोड़म से सरुक याबीरप सिंह तांगसू लाइबक फनसु फंगब ओइबिगदोइनी अखोगी थोड़म से फोन फंगब ताबीरगदी वाफम सिंह फोंदोपिरकनब इसागी फोन फंगबीरगदी वाफम सिंह फोंदोपिरकनब मखाताब कॉलर सिंह हाइजरी मखाताब कॉल अब मुक लखचगे हेलो हेलो
1: हेलो
0: गुड आफ्टरनून उर्मी कौबको
1: रोमी
0: रोमी
1: कई
0: तराम नौचरी रोमी करी करम वाफम नौखी गुड आफ्टरनून लेडीज से थम्बी दोई से है भी हो
1: मैडम रेडियो की सुमायना मैडम की थोड़ा से ट्राई दी नाम तो जाबा दुरा नोम ट्रेडिशन थंग दबा इन से कुछ ये उनका आहान तो थंग जाबा ने अमनो है जेंदा
0: एकोई सु पुंसी गोइन आहान ब फंग जाबा मरुप अमा नसी आकाशनी फालगी थोरम सिंह द हपचिन जरे को याम नुगाई जे तराम नौचरी
1: हराव
0: हराव हरा हरा सिको।

0: हेलो हेलो,
1: हेलो,
0: गुड आफ्टरनून.
1: गुड आफ्टरनून मैडम.
0: कना आई बिरबन मिंग ले खंतक पियो.
1: मैडम आई जीवन को यंग जमे का ने इबेम चा थौनाव जमे.
0: इबेम चा थौनाव जम बोय खय थरम मसद तराम नोक चरी. हैव यू इबेम चा करी करम बवा फोन फोन तो पिदोय से.
1: हपन तो थम जागे. आईना कोई न पियो बे सिंगे. जाय सु सिंगे. ꯊꯛ ꯊꯣꯡꯕꯗꯅ ꯀꯃꯥꯏ ꯉꯥꯡꯅꯤ, ꯏꯈꯥ ꯊꯥꯕꯗꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯋꯥꯇꯥꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ. ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯋꯥꯍꯩꯗꯣ ꯐꯖꯅ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯃꯤꯅ ꯈꯨꯄꯥꯛꯅ ꯑꯅꯤꯔꯛ ꯊꯥꯒꯗꯕꯗ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯆꯪ ꯊꯥꯒꯅꯤ ꯀꯨꯝꯃꯦꯗ. ꯑꯗꯩ ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯃꯤꯒꯤ ꯁꯣꯏ ꯃꯤꯅ ꯁꯣꯏꯕꯗꯣ ꯐꯖꯅ ꯆꯨꯝꯊꯣꯛꯄꯤꯕ, ꯆꯠꯊꯤ ꯆꯠꯊꯤꯅ ꯉꯥꯡꯗꯕ, ꯐꯖꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯋꯥꯇꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯅ ꯃꯤꯗꯨꯕꯨ ꯐꯖꯅ ꯉꯥꯡꯕꯤꯕ, ꯑꯁꯣꯏꯕꯗ ꯆꯨꯝꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯖꯩꯅꯦꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩꯁꯤꯡꯁꯦ.
0: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ, ꯊꯧꯒꯜ ꯂꯣꯟ ꯕꯦꯕꯥꯔ ꯂꯩꯅ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕ ꯇꯝꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕꯅꯤꯀꯣ ꯕꯦꯝꯆꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯦ.
1: ꯃꯦꯗꯥꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯅ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯄꯤꯊꯣꯛꯄꯗ ꯄꯥꯝꯃꯨꯔꯅꯣ? ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯂꯧꯔꯨꯕꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯩꯇꯕꯗ ꯃꯤꯅ ꯄꯤꯔꯛꯄꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯩꯇꯕꯗꯨ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯄꯗ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯔꯥꯎꯖꯕ. ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯤꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯍꯪꯕꯗ ꯑꯩꯅ ꯄꯤꯈꯤꯕꯒꯤꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯕ, ꯃꯤꯒꯤ ꯂꯩꯇꯕꯗꯨꯁꯨ ꯃꯦꯟꯖꯅꯤꯕꯗꯣ, ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯦꯗꯥꯝ ꯑꯁꯣꯝꯗ ꯊꯝꯖꯒꯦ.
0: ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯃꯒ ꯑꯃꯒ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯅꯗꯨꯅ ꯍꯤꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕꯅꯤ. ꯁꯤꯃꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯩ ꯀꯣ ꯕꯦꯝꯆꯥꯅ ꯄꯨꯈꯠꯄꯤꯔꯛꯏꯕꯁꯦ. ꯍꯣꯏ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯏꯟꯈꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥ ꯅꯨꯄꯥ ꯃꯆꯥ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨꯁꯤꯡꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯂꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯔꯝꯗꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯐꯖꯔꯕ ꯊꯧꯒꯜꯂꯣꯟ ꯕꯦꯕꯥꯔꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯇꯝꯕꯤꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕꯅꯤꯀꯣ. ꯑꯍꯟꯗ ꯀꯔꯝ ꯇꯧꯅ ꯉꯥꯡꯒꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯉꯥꯡꯕꯗ ꯐꯖꯅ ꯉꯥꯡꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯀꯣ. ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯨꯗꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯍꯟꯁꯤꯡꯗ ꯐꯖꯅ ꯉꯥꯡꯒꯗꯕꯅꯤ. ꯑꯉꯥꯡꯗꯗꯤ ꯐꯖꯕ ꯋꯥꯍꯩꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯥꯡꯗꯕ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯀꯣ. ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯝꯃꯛꯄ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯩꯀꯣ. ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯐꯖꯅ ꯉꯥꯡꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯇꯝꯃꯤꯟꯅꯁꯤꯀꯣ. ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯏꯕꯦꯝꯆꯥꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯆꯪ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯈꯔ ꯄꯨꯈꯠꯄꯤꯔꯛꯇꯨꯅ ꯑꯀꯥꯁꯕꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯕꯨ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯈꯔ ꯄꯨꯈꯠꯄꯤꯔꯛꯄꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯏꯕꯦꯝꯆꯥꯕꯨ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ. ꯑꯗꯣ ꯏꯕꯦꯝꯆꯥ ꯉꯁꯤꯁꯤꯕꯨ ꯐꯣꯟ ꯀꯣꯜꯁꯦ ꯀꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯔꯒꯦ ꯇ꯭ꯔꯥꯏ ꯇꯧꯕꯤꯕ?
1: ꯃꯦꯗꯥꯝ ꯑꯩꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯐꯥꯔꯁꯇ ꯑꯩꯒꯤ ꯔꯤꯡꯗꯣ ꯆꯠꯂꯀꯥꯟꯗ ꯕꯨꯠꯈ꯭ꯔꯒ ꯃꯊꯪꯗ ꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯐꯪꯈ꯭ꯔꯦ.
0: ꯍꯣ ꯍꯣ ꯍꯣꯏ, ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯍꯦꯛ ꯂꯧꯈꯠꯄꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯠꯈꯤꯕꯅꯁꯨ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ.
1: ꯂꯧꯈꯠꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗꯅꯦ ꯇꯠꯈ꯭ꯔꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯐꯪꯈ꯭ꯔꯦ, ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯃꯔꯤꯔꯛ ꯁꯨꯕꯗꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯇꯨꯠ ꯇꯨꯠ ꯇꯧꯔꯒ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯝ ꯑꯃꯨꯛ ꯐꯪꯖꯔꯤꯁꯤꯅꯤ ꯃꯦꯗꯥꯝ.
0: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯤꯁꯦ ꯕꯦꯝꯆꯥ ꯐꯣꯟ ꯂꯥꯏꯟꯁꯦ ꯈꯔ ꯈꯖꯤꯛ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯗꯕ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ. ꯑꯗꯨꯅ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯒꯗꯕꯗꯨꯁꯨ ꯃꯔꯛꯇ ꯈꯔ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ

नमस्कार खुरम जरी, मैं निंदा खोंगजम रंजना आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रसारित संगाई चैनल में।

दोस्तों आज गीतमाला में आप सुनेंगे कार्यक्रम सदाबहार गीत। कार्यक्रम की शुरुआत में सुना जाए फिल्म आंधी का एक गीत जो अधूरी मोहब्बत और यादों की वो गलियां है जहां किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ दिल को इसी मोड़ पर लाकर रोक देती है। एक ऐसा रिश्ता जो छूट गया है लेकिन दिल वही का वही है। गुलजार की शब्द रचना और राहुल देव बर्मन के संगीत में सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों, बचपन के समय में बारिश के मौसम में भीगना, घर से डांट पड़ना कि बीमार हो जाओगे, लेकिन बचपन बचपन ही होता है। बचपन कभी वापस नहीं आता। आप अपने बचपन को अपने बच्चों के बीच देखते हैं, याद करते हैं। आइए सुनते हैं सादगी से भरा एक प्यारा सा गीत, हेमलता और सुरेश वाडकर की आवाज़ में, फिल्म पहेली से, रविंद्र जैन के गीत संगीत में।

पेश है अगला गीत पवित्र पापी फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में, गीत और संगीत प्रेम धवन का।

मेरी सांसों को जो महक आ रही है ये पहले प्यार की खुशबू तेरी सांसों से शायद आ रही है। आइए सुनते हैं इस गीत को संगाई चैनल में प्रसारित सदाबहार गीत में। फिल्म का नाम है बदलते रिश्ते। लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज़ें हैं। अनजान के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत फिल्म ब्रह्मचारी से मोहम्मद रफी की आवाज़ में हसरत जयपुरी के बोल हैं और शंकर जयकिशन का संगीत

इस गीत के साथ आज का ये कार्यक्रम यही समाप्त होता है. ट्यून करते रहें संगाई चैनल, साथ ही स्वस्थ और सुरक्षित भी रहें. आज्ञा दीजिए, नमस्कार.

0: ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯜꯗꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯤꯡꯖꯕ ꯃꯪꯂꯥꯟꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯟꯅ ꯇꯩꯅꯕꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯇꯦꯜꯂꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯣꯛꯆꯤꯜꯂꯛꯄ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤ ꯈꯔꯁꯤꯗ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤ ꯇꯔꯥ ꯀꯨꯟꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯁꯣꯛꯆꯤꯜꯂꯛꯄꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯔꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯖꯔꯒꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯗ꯭ꯔꯦꯅꯦꯖ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯝꯄ꯭ꯔꯨꯞ ꯇꯧꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯗ꯭ꯔꯦꯅꯦꯖꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯣꯡ ꯈꯔ ꯆꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯗ꯭ꯔꯦꯅꯦꯖꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯠꯇꯕ ꯁ꯭ꯄ꯭ꯂꯥꯁ ꯐ꯭ꯂꯗꯀꯨꯝꯕ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯦꯅꯦꯖꯁꯤ ꯐꯨꯟꯖꯤꯟꯕ ꯃꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯩꯅꯥ ꯄꯣꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯗ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯨ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯋꯦꯖꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯇ꯭ꯔꯤꯠ ꯇꯧꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁꯍꯔꯁꯤꯡꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯎꯁꯍꯣꯜꯒꯤ ꯋꯦꯁ ꯂꯤꯀ꯭ꯋꯤꯗ ꯋꯦꯁ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯌꯦꯜ ꯋꯦꯁꯄꯨ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯕꯨꯗꯤ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯖꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯁ꯭ꯃꯣꯜ ꯁ꯭ꯀꯦꯜ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯕ ꯁꯤꯋꯦꯖꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯖꯅ ꯇ꯭ꯔꯤꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯗ꯭ꯔꯦꯅꯦꯖꯁꯤ ꯊꯥꯗꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯣꯂꯨꯁꯟ ꯂꯦꯕꯦꯜꯁꯤ ꯆꯦꯜꯂꯤꯕ ꯏꯔꯝ ꯑꯗꯒꯤ ꯈꯣꯡꯂꯝꯁꯤꯡꯗ ꯍꯟꯊꯒꯅꯤ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯂꯤꯗ ꯋꯦꯁ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯁꯣꯂꯤꯗ ꯋꯦꯁ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟꯁꯤꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯐꯖꯅ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯦ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯣꯂꯤꯗ ꯋꯦꯁꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯒꯤ ꯖꯤꯗꯥꯏꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯍꯔꯒꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯆꯥꯏꯊꯣꯛꯑꯣ ꯂꯩꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯃꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯦꯅꯣꯃꯤꯅꯥꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯁꯍꯔꯁꯤ ꯃꯣꯠꯂꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯁꯊꯦꯇꯤꯛ ꯚꯦꯂ꯭ꯌꯨ ꯍꯟꯊꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯣꯔꯦꯜꯗ ꯍꯟꯊꯔꯛꯄ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯁꯣꯂꯤꯗ ꯋꯦꯁ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟꯁꯤ ꯁꯤꯚꯤꯛ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤꯁꯨ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯡꯊꯟ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯚꯤꯛ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤ ꯈꯛꯇꯅ ꯐꯟꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯟꯁ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯃꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯌꯥꯎꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯔꯣꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟꯗ ꯁꯤꯒ꯭ꯔꯤꯒꯦꯁꯟꯗ ꯊꯕꯛꯇ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯉꯒꯗꯤ ꯁꯤꯚꯤꯛ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯅ ꯁꯣꯂꯤꯗ ꯋꯦꯁ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟꯁꯤ ꯃꯦꯅꯦꯖ ꯇꯧꯕꯗꯁꯨ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯂꯧꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯄꯤ ꯀꯜꯇꯤꯚꯦꯁꯟ ꯄꯥꯛꯁꯟꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯣꯔꯦꯁꯁꯤꯡꯁꯤ ꯗꯤꯐꯣꯔꯦꯁꯇꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯗꯤꯐꯣꯔꯦꯁꯇꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯇꯦꯗ ꯑꯣꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯁꯝꯅꯃꯛꯇ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯔꯣꯖꯟ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯍꯥꯎ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯆꯦꯟꯗ꯭ꯔꯍꯜꯂꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯈꯪꯍꯧꯗꯅ ꯐ꯭ꯂꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯅꯣꯡ ꯈꯔ ꯍꯦꯛ ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯅꯣꯡꯁꯤ ꯇꯥꯈ꯭ꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯀꯨꯏꯅ ꯔꯤꯇꯦꯟ ꯇꯧꯗꯕꯅꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯠ ꯆꯦꯟꯖ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤꯅ ꯅꯣꯡ ꯆꯨꯕꯒꯤ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯟꯁꯨ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯀꯌꯥ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯅꯣꯡꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯁꯥꯡꯅ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯃꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯠ ꯇꯧꯔꯛꯂꯛꯑꯝꯕꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯑꯇꯦꯟꯕ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯔꯦꯟꯐꯣꯜꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯣꯔꯦꯁꯁꯤꯡꯁꯤ ꯂꯩꯇꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯅꯣꯡꯁꯤꯡꯁꯤ ꯐꯥꯖꯤꯜꯂꯒ ꯇꯞꯅ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡꯁꯤ ꯆꯦꯟꯗ꯭ꯔꯛꯑꯒ ꯐ꯭ꯂꯗꯤꯡ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯄꯁꯤ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯔꯤꯐꯣꯔꯦꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯆꯨꯡꯁꯤꯟꯗꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯁꯨ ꯗ꯭ꯔꯤꯝ ꯇꯧꯏ ꯑꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯥꯏꯖꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯅꯝꯕꯔ ꯋꯥꯟꯗ ꯁꯤꯚꯤꯛ ꯁꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯀꯨꯂꯔ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯇꯦꯜꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯁꯤꯚꯤꯛ ꯁꯦꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯗꯤꯕꯂꯞ ꯇꯧꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯏ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯈꯟꯖꯕꯗ ꯑꯦꯋꯥꯔꯅꯦꯁ ꯂꯦꯕꯦꯜꯒꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯒꯤ ꯄꯣꯂꯨꯁꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯁꯣꯂꯤꯗ ꯋꯦꯁꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯃꯁꯤ ꯂꯩꯍꯟ ꯂꯧꯖꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯟꯗ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯩꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯤꯠ ꯑꯦꯟ ꯒ꯭ꯔꯤꯠꯀꯤ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯁꯦ ꯈꯪꯕ ꯅꯤꯠ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯕ ꯈꯔꯗꯨꯅꯤ ꯒ꯭ꯔꯤꯠ ꯍꯥꯏꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯂꯤꯃꯤꯠ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯒ꯭ꯔꯤꯠꯇ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯟꯖꯨꯝꯁꯟꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯒꯗꯤ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯀꯌꯥ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯠꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯁꯦꯟꯁ ꯑꯣꯐ ꯕꯤꯂꯣꯡꯒꯤꯡꯅꯦꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯇꯦꯜꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯣꯛꯏꯕꯁꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯝꯗꯒꯤ ꯃꯤꯅ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯑꯃꯗ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯜꯚ ꯇꯧꯖꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯁꯣꯜꯚ ꯇꯧꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯁ ꯑꯣꯐ ꯕꯤꯂꯣꯡꯒꯤꯡꯅꯦꯁ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯁꯦ ꯐꯒꯠꯅ ꯐꯒꯠꯍꯟꯕꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯁꯤ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯅꯦꯅ ꯈꯜꯂꯛꯄ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯨꯗ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯆꯨꯡꯁꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯦꯛ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯁꯤꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯈꯟꯖꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁꯤꯚꯤꯛ ꯁꯦꯟꯁꯀꯗ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯤꯍꯦꯕꯤꯌꯔ ꯆꯦꯟꯖ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦꯕꯤꯠ ꯆꯦꯟꯖ ꯕꯤꯍꯦꯕꯤꯌꯔ ꯆꯦꯟꯖ ꯃꯁꯤ ꯃꯊꯧ ꯂꯩ ꯁꯝꯅꯃꯛꯇ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯤ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯜ ꯋꯥꯔꯃꯤꯡꯒ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯩ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯜ ꯋꯥꯔꯃꯤꯡꯁꯤ ꯍꯟꯊꯍꯟꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯥꯔꯕꯣꯟ ꯐꯨꯠꯄ꯭ꯔꯤꯟ ꯍꯟꯊꯍꯟꯕ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯨꯡꯇꯤ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯀꯥꯔꯕꯣꯟ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯤ ꯍꯟꯊꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯀꯟꯖꯨꯝꯁꯟ ꯍꯟꯊꯕ ꯊꯥꯎꯒꯤ ꯀꯟꯖꯨꯝꯁꯟ ꯍꯟꯊꯍꯟꯕ ꯁꯝꯅꯃꯛꯇ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯠꯂꯤ ꯆꯥꯔꯤꯕ ꯐꯤꯁꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯇꯦꯁꯟꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯕꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯇꯥꯖꯕꯗ ꯃꯃꯥꯡꯉꯩ ꯃꯇꯝꯁꯤꯡꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯤꯡꯁꯤꯡꯁꯤ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯥꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯣꯔꯦꯁꯁꯤꯗ ꯏꯕꯟ ꯏꯂꯤꯐꯦꯟ ꯐꯥꯎ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯥꯖꯩ ꯑꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇ꯭ꯔꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯇꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯗꯅ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯃꯈꯛꯇꯅ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇ꯭ꯔꯤ ꯐꯣꯔꯦꯁꯇꯦꯁꯟ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯆꯦꯟꯅꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯤꯡꯗꯨ ꯎꯀꯛꯑꯒꯁꯨ ꯀꯛꯏꯕ ꯎꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯝꯄꯥꯛꯇ ꯀꯟꯖ꯭ꯌꯨꯝ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯜ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯤ ꯔꯤꯖꯣꯜꯚ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯁꯣꯜꯚ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯂꯨꯟꯇꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯏꯁꯥ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯗ꯭ꯌꯨꯇꯤꯅꯤ ꯈꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟꯁꯤ ꯄꯨꯔꯛꯄꯗ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯁꯝꯅꯃꯛꯇ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯃꯇꯝ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯗꯤ ꯈꯨꯡꯒꯪ ꯑꯃꯗ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯒꯤ ꯁꯣꯔꯣꯛꯀꯤ ꯅꯂꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯈꯨꯟ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯂꯩ ꯆꯠꯅꯕꯤꯁꯤ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯩꯔꯣꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯄꯣꯠ ꯍꯣꯜ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯦꯅꯦꯖ ꯄꯨꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯊꯧ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯈꯟꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯟꯕ ꯊꯕꯛꯅꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤꯁꯨ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄꯗꯤ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁꯀꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜꯂꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯀ꯭ꯔꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯕꯤꯍꯦꯕꯤꯌꯔ ꯆꯦꯟꯖ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯁꯣꯜꯚ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯒꯃꯦꯟꯠ ꯈꯛꯇꯅꯗꯤ ꯉꯝꯃꯣꯏꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯁꯥꯟꯇꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯍꯥꯏꯖꯔꯒꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕꯅꯤ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯑꯃ ꯍꯤꯡꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯒꯠꯍꯟꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯕꯗ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯇꯦꯜꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯆꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯕ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯇꯦꯜꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯤꯒ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯝꯄꯥꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯁꯤꯅ ꯆꯤꯡꯗ ꯍꯥꯔꯝ ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯤꯗꯤ ꯕꯥꯎꯟꯗ꯭ꯔꯤ ꯂꯩꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯝꯗ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯦ ꯅꯦꯕꯔ ꯔꯦꯁꯄꯦꯛ ꯗꯤ ꯕꯥꯎꯟꯗ꯭ꯔꯤ ꯃꯦꯗ ꯕꯥꯏ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯕꯤꯡ ꯃꯤꯅ ꯁꯦꯝꯕ ꯕꯥꯎꯟꯗ꯭ꯔꯤꯁꯤ ꯃꯣꯏ ꯔꯦꯁꯄꯦꯛ ꯇꯧꯗꯦ ꯏꯌꯥꯔ ꯄꯣꯂꯨꯁꯟ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯋꯥꯇꯔ ꯄꯣꯂꯨꯁꯟ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯃꯐꯝꯗ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯁꯤ ꯕꯥꯎꯟꯗ꯭ꯔꯤ ꯅꯥꯏꯗꯦ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯈꯛꯇ ꯔꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯊꯣꯛꯄ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯊꯣꯛꯄꯅꯤ ꯂꯧꯔꯒ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯣꯜꯚ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯁ ꯑꯣꯐ ꯕꯤꯂꯣꯡꯒꯤꯡꯅꯦꯁꯁꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯕ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯁꯅꯦꯜꯒꯤ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯖꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯣꯡꯖꯪꯁꯦ ꯆꯪꯁꯤꯟꯃꯤꯟꯅꯔꯒꯗꯤ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯊꯨꯡ ꯑꯃꯗ ꯄꯨꯟꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯁꯣꯜꯚ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯖꯩ
1: ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁꯤꯟꯐꯝꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯪꯂꯥꯟꯅꯤ ꯃꯪꯂꯥꯟ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯄꯥꯎ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ
2: ꯑꯩ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯃꯁꯖꯤꯗ ꯃꯤꯇꯩ ꯑꯦꯁꯤꯁꯇꯦꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯟꯁꯤꯌꯟ ꯏꯁꯇꯦꯟ ꯑꯥꯔꯀꯤꯑꯣꯂꯣꯖꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯀꯥꯟꯆꯤꯄꯨꯔ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯪꯂꯥꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯊꯣꯛꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯪꯒꯠꯅ ꯌꯦꯡꯉꯨꯔꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯐꯔꯛꯀꯗꯧꯕ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯍꯪꯒꯠꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯁꯤ ꯉꯜꯂꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯑꯈꯪ-ꯑꯍꯩꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯣꯠꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯁꯤ ꯆꯤꯡꯂꯣꯟ ꯃꯥꯄꯟꯅ ꯀꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯒ ꯃꯌꯥꯏꯗ ꯑꯣꯕꯦꯜ ꯁꯦꯞ ꯑꯣꯏꯅ ꯕꯦꯂꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯕꯦꯂꯤ ꯑꯁꯤ ꯉꯜꯂꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯆꯤꯡꯂꯣꯟ ꯃꯥꯄꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯆꯐꯝ ꯂꯩꯇꯗꯨꯅ ꯏꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯨꯡꯁꯤꯜꯂꯒ ꯇꯝꯄꯥꯛꯁꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯉꯥꯛꯇ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠꯇ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯀꯪꯅꯕ ꯆꯤꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯒꯨꯅꯨꯔꯣꯝꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯂꯩꯕ ꯆꯤꯡꯅꯨꯡ ꯍꯨꯠ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯨꯠꯇꯉꯥ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯉꯥ ꯃꯈꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯨꯠꯇꯣꯛꯈꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯅꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯤꯠ ꯑꯣꯏꯖꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯀꯪꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯨꯒꯨꯅꯨ ꯅꯨꯡꯊꯣꯡ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯆꯤꯡꯅꯨꯡ ꯍꯨꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯆꯠꯈꯤꯕꯗꯨꯅ ꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯔꯤꯕꯔ ꯑꯣꯔ ꯇꯨꯔꯦꯟ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯆꯤꯡꯅꯨꯡ ꯍꯨꯠꯀꯤ ꯖꯒꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯨꯝ ꯗ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯥꯎꯠ ꯇꯧꯈꯤꯕꯗꯨꯅ ꯅꯤꯡꯊꯤ ꯇꯨꯔꯦꯟ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯇꯨꯔꯦꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯦꯟꯃꯥꯔꯗꯅ ꯆꯤꯟꯗꯨꯟ ꯔꯤꯕꯔ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯇꯥꯈ꯭ꯔꯒ ꯏꯔꯥꯋꯥꯗꯤ ꯔꯤꯕꯔꯗ ꯇꯥꯈ꯭ꯔꯒ बेओ बेंगानदा ताग्र कंख्रे हरिब टोपोग्राफी असिगि मतुंगिना हरिब हिरम अखोइगि इसिंग चेंदगिब मरममसिदा गि अखोइगि मीयसि लामबे यायने थाजनै हाइबदि ज्ञानोसिंदगि बेओ बेंगानदा लागा हाइबदि अफ्रिकानदा खोइना अहानबा मी तागि हाइना थाजनै ख्वाइदगि मी अहानबा ताबजि अफ्रिकादनि अदुदगि सुम छंदोरकबदुना खौजिगि इंडियानोसिंदगि लागा ꯑꯗꯒꯤ ꯕꯦ ꯑꯣ ꯕꯦꯡꯒꯥꯟꯗꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯔꯥꯋꯥꯗꯤ ꯔꯤꯕꯔꯗꯒꯤ ꯆꯤꯟꯗꯨꯟ ꯔꯤꯕꯔ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯐꯥꯟ ꯔꯤꯕꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯔꯤꯜ ꯔꯤꯕꯔ ꯑꯅꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯁꯦꯝꯃꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯔꯤꯕꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯇꯨꯔꯦꯟ ꯑꯆꯧꯕꯁꯤꯗ ꯁꯨꯝ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯇꯨꯔꯦꯟ ꯇ꯭ꯔꯤꯕꯨꯇꯔꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯏꯝꯐꯥꯟ ꯔꯤꯕꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯔꯤꯜ ꯔꯤꯕꯔ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗꯅ ꯂꯣꯛꯇꯥꯛꯀ ꯁꯝꯅꯈ꯭ꯔꯒ ꯕꯔꯥꯛ ꯔꯤꯕꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯔꯥꯛ ꯕꯦꯁꯤꯟ ꯁꯤꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯍꯃꯄꯨꯇ꯭ꯔ ꯇꯨꯔꯦꯟ ꯑꯁꯣꯝꯗꯒꯤ ꯁꯤꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯐꯥꯎꯕ ꯌꯥꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯉꯜꯂꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯁꯤ ꯇꯨꯔꯦꯟꯒꯤ ꯈꯣꯡꯂꯝꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯆꯠꯅꯔꯝꯃꯤ ꯉꯜꯂꯤꯉꯩꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯔꯦꯟ ꯔꯨꯠꯁꯦ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯦꯟꯅꯔꯝꯗꯦ ꯏꯁꯤꯡꯗꯅ ꯉꯟꯅ ꯁꯦꯟꯅꯔꯝꯕꯅꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯥꯆꯤꯟ ꯒꯣꯌꯥ ꯂꯣꯏꯅ ꯁꯟꯇꯣꯛꯑꯒ ꯃꯤꯁꯤ ꯇꯥꯈꯤꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯗ ꯊꯥꯖꯅꯔꯤ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯅꯨꯡꯒꯤ ꯖꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯣꯜ ꯏꯁꯇꯣꯟ ꯑꯦꯁ ꯍꯥꯏꯔꯁꯨ ꯌꯥꯔꯦ ꯄꯦꯔꯣꯊꯤꯛ ꯑꯦꯁ ꯍꯥꯏꯔꯁꯨ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯩꯔꯤ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯥꯔꯣꯟ ꯁꯨꯔꯨꯡ ꯊꯥꯔꯣꯟ ꯀꯦꯞ ꯇꯃꯦꯡꯂꯣꯡ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯀꯥꯡꯈꯨꯏ ꯀꯦꯞ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯡꯈꯨꯏ ꯎꯔꯈꯨꯟ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯃꯁꯤꯅ ꯄꯦꯔꯣꯊꯤꯛ ꯇꯨꯜꯁꯀꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯉꯜꯂꯤꯉꯩꯒꯤ ꯆꯍꯤ ꯂꯥꯛ ꯂꯥꯛꯀꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯁꯨ ꯃꯤ ꯇꯥꯔꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯪꯉꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯈꯔ ꯊꯦꯡꯗꯔꯛꯂꯕꯗ ꯁꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯔꯣꯂꯤꯊꯤꯛ ꯁꯥꯏꯠꯇ ꯅꯥꯄꯆꯤꯛ ꯁꯉꯥꯏꯊꯦꯟ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯀꯩꯊꯦꯡ ꯃꯥꯝꯕꯤ ꯃꯁꯤ ꯁꯤꯡꯇꯝꯅꯆꯤꯡꯕ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯥ ꯑꯥꯔꯀꯤꯑꯣꯂꯣꯖꯤꯀꯦꯜ ꯂꯤꯚꯤꯡ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯝ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯁꯦ ꯉꯜꯂꯤꯉꯩꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯈꯨꯟꯗꯥꯔꯛꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯠꯄ ꯍꯣꯕꯤꯅꯦꯟ ꯀꯜꯆꯔ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯚꯦꯠꯅꯥꯝꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯤꯟꯁ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯔꯒ ꯍꯣꯕꯤꯅꯦꯟ ꯀꯜꯆꯔ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯃ ꯄꯜꯂꯕꯗ ꯃꯈꯣꯡ ꯑꯍꯨꯝ ꯄꯥꯟꯕ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯄꯣꯠꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯐꯪꯕꯁꯤꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯁꯨ ꯍꯣꯕꯤꯅꯦꯟ ꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯉꯦ ꯍꯩꯁꯤꯡꯅ ꯑꯥꯔꯀꯤꯑꯣꯂꯣꯖꯤꯁꯅ ꯍꯤꯁꯇꯣꯔꯤꯌꯟꯁꯤꯅ ꯊꯝꯃꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯇꯥꯛꯄꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯉꯜꯂꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯣꯄꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯍꯥꯎ ꯑꯁꯤ ꯖꯒꯥ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯅ ꯇꯥꯕꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯉꯥ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯐꯪꯕ ꯁꯥ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯐꯪꯕ ꯂꯕꯨꯛ ꯂꯝꯍꯥꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯕ ꯆꯤꯡ ꯃꯥ ꯂꯩꯕ ꯑꯆꯧ ꯑꯆꯧꯕ ꯄꯥꯠꯁꯦ ꯂꯣꯛꯇꯥꯛ ꯄꯥꯠ ꯑꯗꯒꯤ ꯈꯔꯨꯡ ꯄꯥꯠ ꯃꯨꯠꯈ꯭ꯔꯕꯗꯒꯤ ꯂꯝꯐꯦꯟ ꯄꯥꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯛꯇꯥꯗꯁꯨ ꯍꯤꯗꯥꯝ ꯄꯥꯠ ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯠꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯨꯔꯦꯟꯗ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯇꯨꯔꯦꯟꯁꯦ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯩꯕ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯅ ꯃꯤ ꯇꯥꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗꯗꯤ ꯑꯃꯒ ꯑꯃꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯀꯩꯝꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯋꯥ ꯑꯅꯥ ꯂꯩꯇꯅ ꯄꯥꯜꯂꯛꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯠ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗꯗꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯃꯒ ꯖꯥꯇꯤ ꯑꯃꯒ ꯑꯃꯒ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯗꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯁꯒꯩꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯝ ꯂꯝꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯏꯔꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯤꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯪꯒꯠꯅ ꯌꯦꯡꯉꯨꯔꯕꯗ ꯁꯦ ꯃꯈꯦꯜ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯖꯒꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯧꯕ꯭ꯔꯨꯗ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯅ ꯀꯧꯕ꯭ꯔꯨ ꯃꯇꯣꯟꯁꯤꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯛꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃ ꯑꯋꯥꯡ ꯀꯧꯕ꯭ꯔꯨ ꯑꯁꯨꯞꯄ ꯈꯨꯟꯗꯥ ꯑꯍꯥꯟꯕꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯇꯦꯛꯁ ꯃꯆꯥ ꯃꯆꯥꯁꯤꯗꯒꯤ ꯐꯪꯉꯤ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯈꯣꯡꯂꯩ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯥꯡꯖꯤꯡ ꯆꯤꯡꯗ ꯆꯤꯡꯗꯥꯏ ꯆꯤꯡꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯁꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯡ ꯃꯇꯣꯟ ꯃꯇꯣꯟꯁꯤꯗ ꯇꯥꯔꯝꯕꯗꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯀꯨꯝꯊꯔꯛꯄꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯂꯦꯟꯒꯤ ꯖꯒꯥ ꯈꯨꯗꯣꯟꯗꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯋꯥꯡꯕ ꯂꯝ ꯖꯒꯥꯗ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯈꯦꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯟꯗꯥꯔꯦ ꯃꯈꯦꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯖꯥꯇꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯃꯨꯡ ꯑꯃꯗ ꯃꯄꯥ ꯃꯃꯥ ꯑꯃꯅ ꯃꯁꯤ ꯃꯅꯥꯎ ꯑꯍꯨꯝ ꯄꯣꯛꯄꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯔꯨ ꯁꯤꯡꯕꯨ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯅꯥꯎ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯃꯅ ꯇꯥꯡꯈꯨꯟꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯃꯅ ꯈꯣꯡꯖꯥꯏꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯃꯅ ꯃꯤꯇꯩꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯁꯤ ꯃꯅꯥꯎ ꯑꯍꯨꯝꯁꯤꯅ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯡꯅꯕꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯃꯐꯝ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯃꯥꯏ ꯃꯥꯏ ꯖꯒꯥꯗ ꯇꯥꯡꯈꯨꯟꯅ ꯎꯔꯈꯨꯟ ꯁꯥꯏꯠ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯃꯥꯡ ꯁꯥꯏꯠꯇ ꯑꯗꯨꯒ ꯈꯣꯡꯖꯥꯏꯅ ꯃꯈꯥꯔꯣꯝ ꯁꯥꯏꯠꯇ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤꯇꯩꯅ ꯃꯃꯥꯡ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯋꯥꯡ ꯑꯣꯏ ꯌꯥꯏꯝꯄꯣꯛꯄꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ताराका मामागी अदमायना चंदा नदा संदोकतुना गसिदी याम नुआइब ओइन लेरे अदुबु गसिदी एखोइदा अमगा अमगा हान सुनाबा अमगा अमगा नमदनबा अमना अमबु नमहतपा अशुगम बसिंग असे एखोइन मामांगदा मखेनदगी हौरखिबा कबुरुदगी हौरखिबा सुमायना इनंग साइपन जखरिबा अफ्रीका रोमदगी सुम मरी मरी लागा इंडिया ओशनदगी मरी मरी सुम लागा इरावदीदगी अदगी निथी तुरेनदगी चिंदुन रिवरदगी अदगी मणिपुरी रिवरदगी सुम फौरागा भान रिवरद इरिल रिवरद अदगी सोमदना अमरोमदना बराग रिवरद लोकटाक ताब अदगी थौबान रिवरद अदमायना सुम संदोखिबदो अखोइन निंगेंगगा हौगी हौगी थोइबा इरांगसे अखोइन थाइनगी निंगेंगगा अमुतंग कोहनसि हाइरिब हुमजि मसिमनाउनेना खल्लुरगदी मखेनदगी अखोइ इपा अमतगी इमा अमतगी मसा ओइन पोलकपनीना खल्लुरगदी हान सुनबसे लेपखिनी हबसे अइ इसागी थाजेबनी हान सुनबा हौजिकी इरांगसिना अखोइद करिसु कानब पोलकदोंनते अखोइ मसेन मुटपा नतना अखोइद करिमता वर्ल्ड मसिन करिमता अखोइन मेसेज पिनिङाइ लैते पृथ्वीगी हौजिकी मतम थबक चेलब छुगुमब मतम मांगन नद्रब मतम मसिदा सिंगापुर दा चाइना दा यूएसए दा इजराइल दा मोइना तौगिब यामदो मतम नोम फबो मिकुबम फबो मांगनदना मोइना पृथ्वी दा पृथ्वी जे खुदम चन्नब होनरेइदो मदमाइना अखोइसु हान सुनबै महता अखोइगी थाइनगी पाइपुगी नुंखि जानना हौरोकबदो मदु निंसंगगा अखोइ हान सुनबसे ngasi हाइब नुमिसिदगी काउथोक पिरो हाइब मेसेज सिग लोइनाना मतांग स्टेटेसन
1: इलेपाक लेरंबना अखोई लेरंबनी ना चटनबी पुआरी असी इमालेबाकिनी मयेक अमसुं लोन सिसु इमालेबाकिनी तोंगान तोंगान बा फुरुप सिंग असीगी युमले कैरे चिंग पाद दुरेल महुसागी खुदोल कया ngamnamak इरमदम इमालेबाक मणिपुरकिनी ऐगी इमालेबाक असीदगी हेन फजबा कदाईदबु लेरिकबा नुंशीदको ऐगी इमालेबाक नुंसीब पुमनमकी हौरफमनी इमालेबाग चिंगमी तम्मीगी इतिन नफमनी इमालेबाग इनाट की चौथोकफमनी इमालेबाग पिकतकना कयाद नुंसीख्रबा एक इमालेबाग नो मंगखो मंगलान कया लेपतना मंगमी नखिसी इरेपाग इरमदम सिगिदमक मंगफाउन हनसी नोमदी ngaisi numitoi khoisu lepkumsi mathau sangbadi thajabagi pangal pisi मुटनाइद्रबा थवाई ओहनसी माबू इरेबा की मंगलिब मंगलांदा इरेबा की मंगलिब मंगलांदा हौजिताबीरे मंगलैपाकता ऐगी इरेपाक इरमदम थोरम पुथोपी नोंथोमबम रोमा थोरम लानतोपीखिबा युमनाम बब्लू
3: हौजिक ताबी रे मंगले बागता आईगी इरे बाग थोरम मसीबु लांथोपीखिबा युमनाम बब्लू अमदी थोरम पुथोकबा नोंथोंबम रोमा अदुमना थोरम ताबीरी बसे आकाशवाणी इम्फाल के एफएम संगाई चैनल देखिनी

मखल मधिल की थरुम कयाम संदोक तन ताहंजरी बजे आकाशवाणी इम्फाल के एफएम संगाई चैनल दिगिनी हौजिक पुंफम अस्तम पुजरगली मणिपुरी फिल्म से की खुदोल थरुम से की खुदोल के हन बता ताबिरसी खंबतोन फिल्म से की पुष्परानी मदी सुलेंद्र नि के पुंब खोंजल दा बीर मंगोल मिकोलान सेरिंग बा मदी गोपी मदी नोंग इबोम चाना सेरंग बिसे इसे खुदोल तमजरी ताबिसी

0: Youth Times ngai ko taki sigi thoram tabire. Pungfa masida adom gidamak sandokchari. Sumang lila refusee. Lila sigi anishuba aroi basaruk. Lila sanabi gadaba kangbuna Naharol Khongthang Artist Association gi lila kangbuni. Laijari sumang lila refusee anishuba aroi basaruk.
1: Namina nadu usello.
2: Abi gadoba.
1: Seje sinna lai roko. Modern nang na pam jari bun pido modern na momon momon no erega
2: cha cha cha
1: nang na nak tan la erega nang na sa de so la da ba
2: ha
1: ha emoi pandi era mot ai ne ning hong ge nei bu ngo hong ge
2: ma tu ma na sha momon momon no la ga ina te sa so ni ga ga ai na
1: ha gi na te nei bu ngo
2: e pai pai an mai ba han nga la sa si ko na han da ek chan pa la bi phare kari ma pa da soi ba tho ba han di kaur nu pandi era mo ku di te khamu
1: बस मन तो दे पीतो करे पैसा दी लाऊ दे से
2: कई नो
1: हां
2: हां कई नो जी मुरमुम सोल न पैसा रा
1: न दे दे न दे दे
2: आयो पैसा की दिना मामा न न और खतरे में तोले लौकी पैसा मयाम तो अरु न सेरे फुपी दिस को दरे बिकम न
1: ए कैसे काय बोले दे दा अरे वो मो मंत्र मत तुम से मसी दे बा अमांग बचत पे मतम दे सुया हुई को हा
2: और दी मंत्र की बात दी नजा माय बा सासन की बस तू खुदी मग मपा तो की बगा कनी ने
1: कारण
2: मैया कले है बस माय तुम्हारी लिखर मयाम गसिया लुइन मा पांथो की बाप नाते ने मी पुं को नहीं फारे घर भरे लेंगे पोती ने
1: मदु तनी ने न वाखलम लाई से
2: वा खंदु मुने तौने ओसा माई बा इसन पान के तब खन बी उने नंग पैसा वा दी खलु ने कैनो हब के पी पी की पी के ने
1: हाय इबु मोरे पी रे मन ता दो मदु न नुसी वा पावन ग दोरे बजु पोती अदुना इबु गो म पांद की ला तो की द न बा
2: आई दी वा खन मु की द न बा
1: की द न बा इबु गो की सावर बो खवांग द ने जंत्राम तंग सीप तारे गदी ला तो की बुदी लाय द ने नगे ननाक ए त लई र दम ने
2: करी ने हर जो ओई बेई ने ओ जमाई बा
1: नहीं नहीं बुंगा
2: हेरा सारो ने न पके संग जंत्र नु ने
1: हां अल्पा ती ती आम लवी को इबुंग ओ द पीर सिंग से सीधा पांदे पांदे आइरे याम नो आइत्रे
2: होइ ने
1: लुपा सांग आ खते पीरो यार
2: लुपा सांग आ गे वरे नंग साइड हुमांग तागी नांग इब दा ये ला ला ला ला से ला से ला से से चल सिंग म पिन आ चल सिंग जुना अकाउ न अमाउंट भता ब्रा
1: बस
2: एडवांस नी
1: पोत्र
2: मंगो रे बेशन बलाबा लिसिंग मंगा तारा कुल्ला से या खैबो मुंद पिनि भता ब्रा
1: ए ओ
2: दि पैसा से से सिंग मा पायरो 1 2 3 4 5 6 7 8 2000 तारा से सी एडवांस को शेयर पायरो वा पे हाके भता ब्रा
1: ओए
2: ओए से से से से
1: पैसा पामिने हारे खंगने दिवनी से
2: ओजामाई रे छेन पाबिने हाइबी तो मदनी ने इन फ्रान मुम चले जा
1: केदो रे गेने
2: ए रे ओजामाई बा अकोई लेबा सीधा ले बनु पीप जा छे पंग पंग बा मकुक सधियान बा आइदी ले छाबी ग्रुप सिंह जे मकुक सधियान बा याम नैदी ने
1: इमु ओ होय ने कर कर कर मन को मई तो जा
2: ने रे म थो मन खान द नि बा रे सी ने ले रे सर बुदिया को नु मुंबई गुम रानी गुम ने जों ना हाइबी वानी या
1: म
2: तु या त पंग पंग बा याव री ने
1: म
2: तु ने फ्रान साइफ छे
1: इबु मो खुबेर को बदले जों
2: आले जों
1: चेनिंग बदे चेजो
2: चेजो ना
1: चेनिंग बदे चाजो
2: चाजो
1: मको तो हा मेरेगा
2: हा
1: सीधी बा उबदा
2: माथि मो खापि गया नी ने जा माई बा
1: हा बंग रब जानी को देदा वा फमो ख ले नी ने इबु मो
2: कई नो ने जा माई बा
1: इबु मो की माई थोंग सी या अते या तई माई थोंग की मान मान न दम करी गु
2: कई कई दो रगे नहीं माई सी बा
1: इबु मो खुबेर की माई थोंग सी या मसे जगह बों तुई माई थोंग चम माने ने
2: कई दो ओ जा माई बा
1: कई दो रे
2: करियम कथा ने नहीं बुझा कपों थू मारी गगा इतना तो उनको अरे मदना नाथिन हुंदा के नहीं को
1: वो करियम कथा ने बना दी ने इबो वो जगह के बोंदु जी जगह पुना बपुंग
2: मारी जगह में पुनी ने
1: हां जगह पुना बपुंग में ना जगह के बोंदु जगह बोंदु हारि ने
2: होय ने
1: अदु को लबे जगह बोंदु तो के इबो खुबीर के चांगदम ना ना कना के चांगदम ना दूरी नो हां
2: मान ना जगह थिन थिन थाकत पसी ना उतोय ना
1: होय ने थाकत पद वार के दबनी को आइले थाकत पद वार के दबनी
2: हां
1: से से से से आ अरे दी आई एम संगू की के को ओ यूं तो चंगू की के पैसा तो पंगे यार यार यार
2: कया मतो माना महिषा सन रहेगा खोई दो मपाय और बूम गाय ना नो फे नो फे इनाक तो लाग तो नो ओनी के गाय ना मुझे कम तो जर करी नहीं साइड तो ना मुझे उखांग दे बाप तात्रे ने सांग दी एंगिंग शे होई दे मुझे शीत सुनते मुझे ठोकता से लेगा अरे वो ने खंग दो पर फारे द माई छी हाय मा फो खाइन हे या मि तु छे लो दे ने मिनी मंगा के मंग द नो पे नो पे इना के थोंग ने हनी को शा इशा सो ओनी का गाय द्रा हे माई बा नसी की मिस्टर एक्शन पावर दी फाइदो पादा मा ताल थोने नसी दी कुबी खुद लोरे मि खंग को नंग
3: ओसा माई बा
2: अया लाई दे
3: ओसा माई बा
2: अया Ay chandia.
3: Hai ma.
2: Lawo sango phom lawo.
3: Ibungo kubie na tra ne ya.
2: Ma he ma ne nang ta kubere ne.
3: Hai ma.
2: Ai nang la kre so sa mai na hiti nga ta khag minak tia. Lawo sango phom lawo.
3: Hai ma. Ka ya de yong ni.
2: Lawo sa mai hai be ibani kai no hai de mi pang be de le de ba.
3: Hai kubie ya.
2: Lawo sango phom lawo.
3: Ka ya de ni. Tang pe de wi kubie
2: ya. Ya de ya da. Ta kubie kong da suna na mai kong rin pak chai. Ai nang nang thro banang tok thop che. Ai di pang min nong si hai nya ti.
3: Ka ni ma si ta si ba.
2: Lawo sango phom lawo.
3: Nang guni hai hai sia.
2: Ai ba. Ai ba. Hai kisna. Ish bisu bisu te ma.
3: Kai no namu ngaw ro na mina na si je ro selaga. Na si na sandhya sandhya che lu bu. Ka dai sandhya no.
2: Ya. Uza mai ba ibani kai no hai na ba. Adama na simai to no kayo to no ijma. Ite ma sandhya do ana i yau de koi te ma.
3: Ye. Ite ma ba hata re ba hata re. Na mina sa re sandhya sandhya so le si di. Ai koi sandhya bu ra ne ya.
2: Ma ni te ma.
3: Kubia.
2: Te ma.
3: Nang ai khoi sandhya se
2: ai thamo cheng si jai te ma ai sandhya gi demut na haragadi male ma se ikok tak tha galam ju pubang ngam ber sang eng jeninge mai kunda masing khang se maga masing lagam ra lupur har besu ai mai sha phaw da mandri ni te ma
3: kubia
2: te ma
3: nang ai gatina ba yani
2: te ma
3: nang ai gi mi
2: te ma
3: nang gi sandhya phang na ba lam ji te ma na ta ka ni
2: nang ai tali da ko te ma
3: sandhya phang na ji te ma sing ga ni
2: te ma
3: atu bu nang itai magi mating tari pang da ba yadi
2: kari mating gora ne tema
3: itai mai khujine chang ba tum mani she na hana sa to khidam
2: te magi khujine chang ba tum mani ha ba
3: ye ra ai khoi de lamja sara ma simo pani khak leida na
2: lamja sara ma sin ma pa
3: hi ye ra
2: o a tripura ri la pa ma sin ma pa
3: hoi ni ma sin ma pa do
2: o
3: khang nam dro nam bo ma sin ma pa do
2: हे नै ते मारु इदम तो रपि नहान मकै लैका ही दै ब मैरा पाइ दि रि क्लब कि धाम मयाम जि मै हुरु सौगरी नि ते मा हे कै यु दामु इते म तो रुछि हे दामु जि फ्रबदा जु फमजाउ पाइ मे तिलि ब संग तोरि नि हे मसरे बा पाखंग मे छले
3: चुमी
2: मसरे पिले छाबी डबल मे छले थमजलि बि बिसिना पाखंग मे छाबी मगा करि म तै उमी उ त मंगम ब्रो फतंग द बदाम लागरि लैका हो तो पसप त मा लैका मे सौगरी नि ते मा
3: हदि अदु दै बुङो इबुङो कुबिने ने खै सान्ध्याबु असुम नु सिबिरंग पामबिरंग वने दिदि टाइमदि खंगदे दो
2: गाका दिदि मा कुइ जानि नि देमा
3: ए अमरों द हारे दिनिया इबुङो कुबि दे लै जाबदि माराय ब थमा सा पनि
2: होय देमा
3: लाइकाय दु इबुङो कुबि रगु म करा लगे
2: हा
3: सत्ते येङो लंदे येङो तवङ म सक्ति दि येङो
2: होय होय
3: ए इबुङो द लै जाबदि ने माराय ब थमा सा पनि
2: आइ ने जु मंगोले द मा हारि नि देमा
3: अदु बुनि बुङो
2: करि देमा
3: मसिन म पासि हेक लै दिङे दिनिया इबुङो द ये प्रार्थना आइ वन द ये प्रार्थना पना मख द
2: ยัตระไหลดอมสุเมเตมาอันดมรชีสันธยาไนงอนดิมามาชีไลรับเตตวยชีดิอาดิลาปนิปาดิมาดิวาคลุนดินา
3: หมานีอะตุนะนี
2: เอไรเตมาไกดงชีเกอตานโทกิเจบาโตเชบรางชีตอวะเฮงตอวะไอตอกิเตมาไอคังนีเนี่ยอิบงอกุเบเนตะนะมวยบุไลไกตานมังมะกะนาไลเกเอไลวะไอตอกิเตมาอิบงอเนอิงกิตะตอกิดามวยมินิตะนพายุปันทังมังเว ละมาเกอกิคามังงิงเกเตมา
3: อะตุนะกุเบีย
2: กะริเตมานัมไอกัน
3: ไตกะนามะตะทานมะยะบะนะติดะเออไอเตมานานาบุทอกาทอกีกิมีดงนาอะตุจะนี่บงวาตานซาซิตะเนียไอเตมานออะซามายบิมะติจุนะคิตังเฮลอจะนิงบาไอมาเลเยออะซามายบิอิมเลเยไอเตมาซามายบิสลามะตาบะตะเนียไหวๆไหกะบะคังกะบะมันตระจันตระขะนานบะไซนะฮันบะฮิกาเปกะอะสุติมะติกะไหยินตาซะเยบะซุมเอเตมางัมกะบะมายบะนีเนียมีเจเชียนเกงัมบะตะเฮงกะลังเกงัมบะซะติเลเคโบซานีเนียไอเตมายบะเชียนทุมดะคิตะเดราอิมวาจังเมงมะซังจุนุโกไหวๆไอเตมายเทาอะกิซาบะนีเน
4: ไปชาดิตาแล้วก็พังนี้มวยซ่ามากต้องสรุปดิจังจะสรุปมึงโจเมเตมาอดิเล็งเชลเซอซามาไอ้บดูอุนรุเซไอ้วาพังดูกังทุกจะแกมันนึงอยู่ไปเตมาได้ไฮนิงบาชาริงบาวารีมายามโดตานะบีรออกุตมายามโดไอ้มันจริงๆเล็งเชลออลออยเตมาเล็งเชลออเล็งเชลออเตมาเล็งเชลออมัมเจตรีมัมเจตรีลาจีละบ่ใส่กาบ่สิกิซาบีโลไอ้ยุมเซยาตาไลเซ
2: ऐ नंगला आ त्रिपुरा दे लागा युम जे सैदांग लेबी सैदांग बिले छाबिब दा मिंग दि करी थैबी थैबी अया मोरांग सिंह खुब जुबराज की मम्मम लई निंग टीवी लांगलेन थैबी की कोलोय मिंग ले लरो ग थोन बिनी ने आदि नंग सिदि लाय चुदन बि पिटत फाटत पि आदि लागा सि सैदांग लेबी रिफ्यूजी थ्वेबी तारे ने
5: सोंकना उने बिगदम
2: सोम बुकना उने बि दगा मसा कसे फजे द टोरे ने नंग नबुंग हम ताकत वर लेब्रा
5: हाउ सिक दि लेती
4: Aye, life se, nasi no patang tu pelai ni. Malang tamu, laika eski senjau bayi buku bela aga, nasi no pat jaga asli bi yaro en nampat abra.
3: Aduh, nasi you mesti ya dekah kan asin adu na, you mesti mita topeng am dori ba.
4: Oh, Sandhya, aye laika eski mie moina, atau pembiran cak ya sengsir tu laika se, mayan tu yang gilaika emo hening da badrani.
3: Malay mesti lemin erba mihoi besing na, magi magi hebe kalu kahin erba degi. Ekoi bersih lagi mesti yang tiada pun baru hulal lepas ini kau biru mana ni?
4: Sandhya, ikhong masih tang bayi ada napa? Ia lebih uli wali mayam singa debu. Kakak lagi lantuk ini matam dah. Jiba par masih naik dengan minum si popuri kubir di pam de.
3: Ma pam masih ada dom dia kata uli wali dah hodie na.
4: Sandhya,
3: adun dia dekat dah. Usi kalau yang mai tahu ini tok ni.
4: Sandhya,
3: tapi musa sila.
4: Eh, aku Sandhya. Nang handam masih saksi am takal ini kuah.
3: Adun kalau sekali sukai de.
4: Nang matam bumbu yang aku biar bersihkan beri ngamatra.
3: Lekah ini masalah masih sen gunda atau umi itu di. Sandiaga ni kadung ni kai kuno kening dia.
4: Fai fai fai. Nang nado aku biar bersihkan apa di. Makah tarik pada. Imu ngasih dah. Kaya am sah tiba thoro thoro pergi apa do. Tahu na fabi. Nang nami tini yang kau nang.
3: Aku biar.
4: Tema.
3: Itu ngah. Kaya am pilih gila apa. Itu imu jangan sah imu dale. Kau kau rupai adro. Zanu ngah thabro.
4: Tema. Anda marik si. Noi mungkin meeting ke saksi am na hagen nari neko.
3: Kau jauh nari kiri.
4: Lekai panabak kat takhali buku beri na. Salam cecak pematamda. Miku pungja kat ngai tu nikuk dia bersih. Masih meri kau unda fahy.
3: Kubi mai kau he.
4: Kang kau nang.
3: Kubi mai kubi. Ina ma. Masih kau mewah sih sih mungkin sih selalu tu na. Ma kau ni sakai sah puni. Aku ni sakai masa ane tu ni am usit ma tu gulai bersih. Kali degi na bersih. Ina ma sekarang kamu tu eh.
6: Hei ma. Kau ini kan wanita muncin beri sih na. Kisahnya dah. Hai Tobi ya.
7: Inumsa.
6: Nangsi pi pahudori bayi tu lah.
7: Oh inumsa.
6: Ah, ayah si jenis pi yang sudori, pi pahudori. Nang kita yang pahulu. Ibe ma. Golik pimpam, pi pahpam. Segat segat pun si nanu goi si. Kaya ada kan hai kapani. Nangsi nanu yau kali bo.
3: Inumsa. Kau ini inumsa hai biru bo. Macam mewah biru hai lo.
7: Ya ni ni ni. Ay aku kata pahulu gini.
6: Hari. Ekui kagai ni, na, ekui kagai ini ya, ha, nanti nana ekui kagai jadi sih bu, nasi lo panen ibu kagai sih berani ya.
7: Inam sah,
6: hema, nih saya dah mesti yang mami na, yang mami sila kata orang
3: inama, inama wah kalau kan tapi wah, hai wah sih itu biu masalah mina biu orang ngamam tu wah iran ya,
6: biu ma, nanti sih bisang sangat leh dora,
3: bisang sangat ni wahat inama, biu masalah mina biu orang muda, aduk kan ngamam ngam lebi, inama thamoi dekana thamoi no, macam biu bi dharma lor,
6: is dharma leh ini he, is. Dharma betar, nih nasib nampak dharma lagi betul tak? Masih yumba masih orang ribu bahasa saya. Kalau lembut ini yumba pusing orang tan bidori.
3: Ina ma,
6: kita ingat ngan gurie, cecut hekap sini ada. Nong amal ini betah ho, mipan so so lawan ada. Madu nampu di lamzah sana orang ini, kena ada orang yang
3: ada. Ina ma, ina ma gua hising do, kena dekat malle. Madu orang sekarang tu di third class ke middle class ngan tu orang ni.
6: First class ni hey, first class ni ko, ibu ini ini sih tadi ya.
3: Ina ma.
6: Sungkeda, sungkeda, hal mana, hal apa sungkeda? Ningguan saja, kita hilang lagi ni ya. Mafan dat lagi tu, mafan dat. Nama ini bukan sabi kira ha.
3: Inama, lawai hebesi, lambat kai benda dia. Nih ni orang sengang, ni tini orang sengat tu benda. Lawai hai nere besi.
6: Hey, nama ni lawai dia ha. Nama saya dah miskali kau dia. Nama saya dah miskali kau dia.
3: Inama,
6: mung tau ti dia itu mung sengal lagi tu na. Nasi lo panah kau yoi berhe.
3: Inama.
8: Tobi, nang itu memang kerja haru re. Ha, nang itu memang kerja haru lagi.
6: Ingin dia dah.
8: Itu ini memang ada betapa nang kerja teruk lagi. Hayo, kerja ini ho, kerja ini super di sini. Kerja ini ho, hayo, kerja ini memang super di bersih ho.
6: Tapi, ah, bunga nong ya, masih di tengah wakar lagi bunga. Ibu mahu hari ini tabah kimi ni nenek ayuh mata he sekarang undang halai itu. Ia ini mahu hari unanah betanja sih. Ia pang he pang ada bah. Wah ibu sini ibu, nui lagi berkah sih. Ayuh kui dah kah lagi. Nada apa mien ko?
3: Ina bah.
6: Aduh kan ibu, ibu tu. Yang masih dah ni sendu pi sabi sah he sah lagi ni nak. Kau ni lekai kawang si mang dene. Pidat pada berpakang cai dangan bersih. Lekai ni am si mang dene.
3: Ina bah.
8: Ina bah.
6: Kau ini ina. Kali itu cuma gini ya. Tala bahasa kan ikhang dah mai sih bu, hak doang ini mai pun panggil kau ini ada.
3: Ibu.
9: 이때 임마

0: ऑटोमेटिकली ए आई याब एप्लीकेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मतेंगना ग्राम सभा की प्रोसीडिंग से ऑटोमेटिकली थोलपनाबा मिंगोंद ह्यूमन एफर्ट से हंदनब
1: ट्रांसपेरेंसी
0: एप्लीकेशन खरचे
1: होजी अनौब अखोगी पाई निर्णय एप का तकबीब अनौब एप्लीकेशन से अखोगी करम फिवम लेबिरिसे
0: सिजिनब हौरे पाइजु सिजिनब हौरे अइनजु हाना पंजगिब हुजि हुजि चथरिब सर्वे अमनि सिजु अनलाइन तौरिनि अखोइना अनलाइन तौरिसि कैगिनोद हायेंग प्रजादुनजु उव फंगनब अइगि खुंगंजि करमब जगादन फरिनो करमब जगादन सोथरिनो मोइना खंगगदि हें ग्राम सभा फं फमुकपद इसी जगाजि द पै हेना खन्नासि अदुम्बगी खुदोंसाबम लेनबसिजु अनलाइन तौजैको इजे अखोइना तौबजे पंचायत एडवांसमेंट हानजि पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स न हायरमि दु हंदक छै दु ओन्तो किम नि पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स एडवांसमेंट दु ओन्तो जि न कैनो द ग्राम पंचायत हम जे कैंप एडवांस होय रगे छै हंदक छै दगे मथंग छै जि जे कैंप एडवांस होय छल लगे जे हान लेरम बदुगा हंदक छै जि ग कैंप एडवांस होय छल लगे हाव दु अदु खंगनब पोट होयबनिना बेन पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स न थाने थोंसि बिबनि
1: अद हौजिकि हाबिरिब अनौब एप सिनसे खैगि लमदम सिद पाइखतप चंजन बि पहौर पसिदि खैगि डिपार्टमेंट कि माइकैदा अदुगा थबक थबम सिनसे पाइखलकपद करिगुमबद खुदुंग चादब गुमब थेंगनाबा अदुगा एसडीएम नुवाई सिदि अभियान फब एप नि गहायबा दुगुमब खनबिब दुगुमदि लैब्रस मागि मेरिट्स एंड डिमेरिट्स आइ जतारे शुगुमबदि थेंगनाबिद
0: अदुम्बदि पाक्ना लैबदि ओइदे कैगिनोद सिगि एप्लीकेशन जे यामना कानाब एप्लीकेशन अमा
1: ओइबनिना
0: खोगि सिगि एप्लीकेशन सिन दुजुजु गवर्नमेंट गि डिपार्टमेंट गि ऑफिशियल खतंग सिन दुइने ब कैगिनोद डाटा हंगनि ब क्वेशन मेम दुदि प्रजा दि लैब न तमिन प्रजा दि सिजिन दे
1: कोइना
0: डिपार्टमेंट सिन जुदा मोगि क्वेशनरीस लै अदु तो पीरगा मोइना मेनजला मेनजला पीरगा कोई पंचायत की पंचायत सेक्रेटरी है जिसना अपलोड से तौने अपलोड तौरगा डाटा मैम दी प्रजा कानब हुई देव लास्ट की माँ की फाइनल प्रदक है तार कदाई तो सोथरी नो है प्रजा उब फंगने ए बी सी डी कहीं मोई मार्किंग पी दुने जीरो टू हंड्रेड की मनुंग से मोई याम फई खतंग फगल खर फगल तौब खर वाली ए बी सी डी कहीं खाईदी मार्किंग प्रजाजुम लाइन उहनब ए बी सी डी कहीं पीरगद एजन फरी खत वाली डी खर सोथरी इलाइ लाइन खाब
1: है
0: तौबे पाई रिजल्ट से कोई थोलर से फ्लेक्स कापथोग नपग थमने ऑफिस
1: कई
0: खुगंग खजनब चपद लापद
1: उजनब
0: है
1: पंचायत घर
0: पंचायत घर थेली पोटो पाई है सर्वे तब लोरग थोड़प रिजल्ट
1: नाइजे सर अब लोशलपना राज्य मणिपुर तसेंगे खुंगनाबनी चौखटे इहान हानद खुंग चौखटाब सर अदम से खुंग की प्रजा सिंह अनौब एप का सिजिनदना खुंजासिंगी पंचायत लौखलिब थौरांगसिंसि मयामद हेन्न मपुंग फान खंगन्नबगिदमक पाइखलिब ई ग्राम स्वराज हाइबिरिसे मसिगी कानबसि हेन्न फंगनबगिदमकता लमदमसिगी प्रजा मयाम मरोइना खुंजाय चिलिनाउसिंसिद सगी माइकैदगी करी हाइबिनिनि अरोइबोइनि खतन हाइबि
0: ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन जे प्रजासिंगना यिंगनिङे ताजु तारे डायरेक्ट गूगल चंगा ई ग्राम स्वराज थीरजु यारे नत्रगना egramswraj.gov.in जे चंगा याब मैम से चंगा अमुक यू ई खुंगना करम फिवम लेनो मी की खुंगना करम फिवम लेनो है पोचे यू पंचायत की फंक्शनरी लोटप थमी खोटली प्लानिंग हाइदे खोटे है मैम tai adu haiduk ta banate koi gi igram sora se upload dor thami changa ga yeng biu igram sora se changa se citizen section nam yorong ni ba citizen section se da kai kai yau ge have to yeng biu adu gi planning gi matang changa ga yeng biu mai am da aware oi na ba hai ta koi na office ta ek chalu ro hang bu ju tangum to adu na kai kai lai ba sa no kai na praja chingna ba lai ba ching do si da dum changa ga yin bi bi ani igram sora si da maru ina koi central finance commission ki 15 finance kaina lai bje si gi matang da record thammi
1: hai
0: aduga state finance commission gi matang da record thammi
1: hai
0: adu khara lai ra ga di ji gram panchayat si da thadari ba scheme sing ji loi ma kusla na ba di ji tawri adu department ji amaga amaga su mana da bani na
1: hai
0: mo gi marakta ya na bu porak na bu ju koi gi ministry of panchayati raj na kan honari hai tar bujik se aduna record atai gi su to bo ho re
1: hai
0: changa ga yin biu si hai jen ning me yam da
1: hai yam nu ngai jai ho ji ki matam si da koi digital era si chamshal lak pagal oina na koi lamdam si da panchayati raj institution sing sina pai khadli ba tongan tongan ba thorang sing si koi digital gi thakta na pushal lak na ba ho na ba si da e gram swara sai ri ba si kari no daga machine ai koi gi khungang gi chili na option si da pai ayam na kan ba pb ri hai ba na ching ba gi matam da koi gi rajya gi rural development and panchayati raj gi state informatic officer oina laibiriba thokchom trilok channa yamayek singna marik chumba wafam kaya thambiduna koida ngak unajana bagi tanjapi bi bagi dama server roi roi nam kahna thagachai
0: thagachai
2: igram swarasna miyam da karamna kanaba phangali haibagi matangda rajya gi rural development and panchayati raj da state informatics officer oina laibiriba thokchom trilok changa nachega unaduna saba wari watai si tabi baga loinana ngasigidi akhoi khungang gi thorum da thamjaba mapungoi ba thorum singdi loishinjari bungo adubo ichilukpa kaina jadringai da akhoi thorum siga mari leinaba commercial break mathe kamatang taminasi
3: hello khungang live phone in program
4: hello khungang live phone in program tha khuding gi aroi ba thangja khungang gi thorum da sandok chaba
3: hello khungang jalli ba tha sigi oina lagli ba jun gi tang kun tare thang je numit numidang pung taruk minit ni fu khungang gi thorum da sandok chegeni hello khungang live phone in program khamjuri bi hiram mapung oiba lorok ki sem sa ba expert oina lengsin bigada ba dr songtham robin singh sms agronomy KVK Imphal West
4: miyam na studio ge telephone number
3: 9362327078 call to biraktuna thoram asibu saruk ya biu hello khungang
4: live phone in program
2: adudinga sigidi ekhoi gi thoram gi matam shu loirabani na ichilukpa swaide sum kainarasi
5: phagani seven
2: tabiri ba khwai pum namak pochilukpa namukahana
5: khurum jari

गीतों की बात ही यही होती है, इनमें शोर नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एहसास होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सिर्फ और सिर्फ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम है हर श्रृंगार और मैं हूं आपके साथ रितिका।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

अभी जो गीत आपने सुना फिल्म चमत्कार से, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज, और इस गीत को लिखा आनंद बख्शी ने और संगीत से सजाया अनु मलिक ने।

तो दोस्तों हर श्रृंगार में आज बस इतना ही। 11:10 पर गीत मेरे मनमीत कार्यक्रम में होगी आपसे फिर से मुलाकात। बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। और अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: The United Kingdom Free Trade Agreement has...
2: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
1: And together becoming a force multiplier.
0: श्री गोयल 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर हैं। इस दौरान वे 15 जुलाई से लागू होने वाले भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि आत्मनिर्भर देश संकट काल में आर्थिक स्थिरता बनाए रखने और विकास प्राथमिकताएं पूरी करने में अधिक सक्षम होता है। राष्ट्रपति ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा के 2023 और 2024 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आत्मनिर्भरता राष्ट्रों के लिए रणनीतिक आवश्यकता बन गई है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये स्पष्ट हो गया कि स्वदेशी रक्षा क्षमताएं, उन्नत प्रौद्योगिकी और मजबूत घरेलू औद्योगिक आधार किसी राष्ट्र की परिचालन तत्परता और रणनीतिक प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए अति आवश्यक हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि सैन्य इंजीनियरिंग सेवा देश के रक्षा ढांचे की रीढ़ है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 अन्य घायल हो गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई है। राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के बाद भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता की सराहना की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा व्यक्त की गई संवेदनाओं पर आभार जताया। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंटकायाला और बाश्यम राम कृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर वर्ष भर आयोजित कार्यक्रमों के समापन समारोह में भाग लिया। ये कार्यक्रम उस दमनकारी दौर को याद करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने के लिए आयोजित गतिविधियों की श्रृंखला का समापन समारोह था। उन्होंने कहा कि ये आयोजन इस बात की याद दिलाता है कि अहंकार और अत्याचार क्षणिक होते हैं और आखिरकार उनका अंत होता ही है। बांग्लादेश में भारत के नव नियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में अपना कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को अपने परिचय पत्र सौंपे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के बाद श्री त्रिवेदी ने ढाका स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वीजा केंद्र में बड़ी संख्या में आवेदकों को देखकर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए सामान्य वीजा सेवाएं फिर से शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि 28 जून से पर्यटक वीजा के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। अब 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब ₹2,500 शुल्क देना होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप ई मुकाबले में कुरासाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इक्वाडोर और जर्मनी आमने सामने होंगे। आईसीसी महिला 2020 विश्व कप में मैनचेस्टर के एमिरेट्स ओल्ड ट्रेफर्ड में ग्रुप ए के मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Renuka. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement will act as force multiplier to support the global economy. Addressing the India Global Forum IGF UK-India Week in London today, Mr. Goyal said Free Trade Agreement FTA with the United Kingdom is the most comprehensive agreement that India has entered into so far. The minister reached the UK on a three-day visit to review the preparedness of both countries for the implementation of the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, which will enter into force from 15th of next month. Mr. Goyal added that the agreement will further integrate both countries into global value chains and open new avenues for economic cooperation and growth.
1: Partnership with UK is taking many more dimensions. So now we have a very highly strategic partnership, whether it comes to technology, investments, defense, and critical minerals, our shared objective to fight against terrorism, our effort to bring global peace and stability, our joint effort in several multilateral fora to bring good practices which will make it equal for all countries to do business in a fair and equitable manner.
3: Venezuela's acting president Delcy Rodriguez has said that 164 people have died and 971 others were injured after a pair of powerful quakes hit the country. Last night, 7.2 and 7.5 magnitude earthquakes hit the country. Buildings were evacuated in places as far away as Brazil's Amazon, about 1,700 kilometers from Venezuela's capital, Caracas. Meanwhile, the president of Venezuela has acknowledged the solidarity expressed by India in the aftermath of the earthquakes, saying it is in keeping with the spirit of cooperation between the people of India and Venezuela in times of difficulty. She welcomed the remarks by Prime Minister Narendra Modi, who expressed his condolences and India's willingness to support relief efforts in the wake of the severe consequences of the earthquakes. The government has hiked the fee for application of passports, with a 36-page fresh passport or reissue of passport now costing 2,500 rupees. The Passport Amendments Rule 2026 will come into force with effect from 1st of next month. In a notification, the Ministry of External Affairs said that under the new fee structure, a fresh passport or reissue of passport under Tatkal will cost 5,000 rupees. The fee for 60-page ordinary passport or reissue will be 3,500 rupees and under Tatkal, this will attract 6,000 rupees. The existing fee for a 36-page passport is 1,500 rupees and for a 60-page passport is 2,000 rupees. Prime Minister Narendra Modi met Queen Maxima of the Netherlands, the UN Secretary General's Special Advocate for Financial Health, in New Delhi today. In a social media post, Mr. Modi stated that during the meeting, they discussed how India's digital public infrastructure-led revolution is making financial services more accessible and affordable, enhancing ease of living and empowering people at scale. The Prime Minister added that India remains committed to sharing its experience with partner countries across the world. National Testing Agency NTA has opened a window today for candidates to challenge the provisional answer keys for the NEET UG 2026 re-exam, which was held on the 21st of this month. In a social media post, the NTA announced that the answer keys are now available at www.neet.nta.in. Students can challenge questions for a fee of 2,000 rupees per question until the 28th of this month. This fee is fully refundable if the challenge is accepted. India's newly appointed High Commissioner to Bangladesh, Dinesh Trivedi, formally assumed office today after presenting his credentials to Bangladeshi President Mohammad Shahabuddin at Bangabhavan in Dhaka. Following the credential presentation ceremony at the Presidential Palace, Trivedi visited the Indian Visa Application Centre in Dhaka to inspect its operations and interact with officials. In the FIFA World Cup, Curaçao will take on Ivory Coast in Group E match at Philadelphia in US at 1:30 Indian time. In another Group E fixture, Ecuador will face Germany at East Rutherford in at 1:30 AM IST. And that's the end of this news bulletin.

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सिर्फ और सिर्फ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर. कार्यक्रम है गीत मेरे मन मीत और मैं हूं आपके साथ रितिका.

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

तो दोस्तों गीत मेरे मन मीत में आज बस इतना ही। जयती आ चुकी है निशिगंधा लेकर स्टूडियो में। अब आप मुझे दीजिए इजाजत, आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सिर्फ और सिर्फ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब से थोड़ी ही देर में सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: The United Kingdom Free Trade Agreement has...
2: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
1: And together becoming a force multiplier.
0: श्री गोयल 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर हैं। इस दौरान वे 15 जुलाई से लागू होने वाले भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय मामलों की विशेष सलाहकार नीदरलैंड की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि मुलाकात के दौरान उन्होंने चर्चा की कि भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना किस प्रकार वित्तीय सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाकर जीवन सुगमता बढ़ा रही है और लोगों को व्यापक स्तर पर सशक्त बना रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पूरे विश्व में साझेदार देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने को प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि आत्मनिर्भर देश संकट काल में आर्थिक स्थिरता बनाए रखने और विकास प्राथमिकताएं पूरी करने में अधिक सक्षम होता है। राष्ट्रपति ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा के 2023 और 2024 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आत्मनिर्भरता राष्ट्रों के लिए रणनीतिक आवश्यकता बन गई है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये स्पष्ट हो गया कि स्वदेशी रक्षा क्षमताएं, उन्नत प्रौद्योगिकी और मजबूत घरेलू औद्योगिक आधार किसी राष्ट्र की परिचालन तत्परता और रणनीतिक प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए अति आवश्यक हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि सैन्य इंजीनियरिंग सेवा देश के रक्षा ढांचे की रीढ़ है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने कहा कि देश में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 अन्य घायल हो गए हैं। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के बाद भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता की सराहना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहत कार्यों में भारत की सहायता करने की तत्परता जताई है। सुश्री रोड्रिगेज ने अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की सराहना की और वेनेजुएला के प्रति एकजुटता के लिए आभार व्यक्त किया। दोहा स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि रास लाफान घटना में मारे गए 12 भारतीय नागरिकों में से 4 के पार्थिव शरीर भारत वापस लाए जा रहे हैं। दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में अन्य पार्थिव शरीरों के भी जल्द भारत भेजने की आशा व्यक्त की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने कल से उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी को चुनौती देने का विंडो खोल दिया है। मेडिकल कॉलेजों में दाखिले की ये परीक्षा इसी महीने 21 तारीख को आयोजित हुई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी अब www.neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती स्वीकार होने पर यह शुल्क वापस कर दिया जाएगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप ई मुकाबले में कुरासाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इक्वाडोर और जर्मनी आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 1:30 बजे से खेले जाएंगे। आईसीसी महिला 2020 विश्व कप में मैनचेस्टर के एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड में ग्रुप ए के मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Renuka. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement will act as a force multiplier to support the global economy. Addressing the India Global Forum IGF UK India Week in London yesterday, Mr. Goyal said, Free Trade Agreement FTA with the United Kingdom is the most comprehensive agreement that India has entered into so far. The minister reached the UK on a three-day visit to review the preparedness of both countries for the implementation of the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, which will enter into force from 15th of next month. Mr. Goyal added that the agreement will further integrate both countries into global value chains and open new avenues for economic cooperation and growth.
1: Partnership with UK is taking many more dimensions. So now we have a very highly strategic partnership, whether it comes to technology, investments, defense, and critical minerals. Our shared objective to fight against terrorism, our effort to bring global peace and stability, our joint effort in several multilateral fora to bring good practices which will make it equal for all countries to do business in a fair and equitable manner.
3: Venezuela's acting president Delcy Rodriguez has said that 164 people have died and 971 others were injured after a pair of powerful quakes of magnitude 7.2 and 7.5 hit the country. Buildings were evacuated in places as far away as Brazil's Amazon, about 1,700 kilometers from Venezuela's capital, Caracas. Meanwhile, the president of Venezuela has acknowledged the solidarity expressed by India in the aftermath of the earthquakes, saying it is in keeping with the spirit of cooperation between the people of India and Venezuela in times of difficulty. She welcomed the remarks by Prime Minister Modi, who expressed his condolences and India's willingness to support relief efforts in the wake of the severe consequences of the earthquake. Uttar Pradesh government has taken action in the alleged Ram Temple donation anomaly case in Ayodhya and arrested three persons. ADG Lucknow Zone Praveen Kumar told Akashvani News that three persons have been arrested. He said an FIR has been registered at Ayodhya Police Station on the complaint of Krishna Mohan, a member of the Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust. A total of eight people have been named as accused in the FIR, though no major or prominent name has been included. Six of the accused are reportedly cashiers. The probe was related to alleged irregularities in the handling of donations received for the Ram Temple. The government has hiked the fee for application of passports, with a 36-page fresh passport or reissue of passport now costing 2,500 rupees. The Passports Amendment Rules 2026 will come into force with effect from 1st of next month. In a notification, the Ministry of External Affairs said that under the new fee structure, a fresh passport or reissue of passport under Tatkal will cost 5,000 rupees. The fee for 60-page ordinary passport or reissue will be 3,500 rupees and under Tatkal, this will attract 6,000 rupees. The existing fee for a 36-page passport is 1,500 rupees and for a 60-page passport is 2,000 rupees. The Indian Embassy in Doha announced that the mortal remains of four of the 12 Indian nationals who died in the Ras Laffan incident are being repatriated to India yesterday. In a social media post, the embassy expressed its hope to repatriate other mortal remains soon. It extended gratitude to Qatari authorities and Indian community organizations for their support and coordination. The embassy also stated that it has been in contact with the Indians injured in the accident. The NTA has opened a window yesterday for candidates to challenge the provisional answer keys for the NEET UG 2026 re-exam, which was held on 21st of this month. In a social media post, the NTA announced that the answer keys are now available at www.neet.nta.in. In the ICC Women's T20 World Cup, India defeated Bangladesh by 5 wickets in a group A clash at Emirates Old Trafford in Manchester. India comfortably surpassed the target of 137 runs, scoring 139 for the loss of 5 wickets in 6.5 overs. And that is the end of this news bulletin.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।

अगर कोई कुम्हार होता, अगर कोई कुम्हार होता और वो सचमुच दो पुतले तोड़कर तीसरी मूर्ति गढ़ सकता, तो वो मूर्ति मैं नहीं बनाती। मैं तो चाहती कि तुम्हारे हाथों की रेखाओं में मेरी उंगलियों की स्मृति रह जाए और मेरी सांसों में तुम्हारे होने की हल्की सी गंध। मिट्टी मिलाने से पहले ही हम दोनों ने एक दूसरे में बहुत कुछ छोड़ दिया है। तुम कहते हो कि तुम्हारी पुरानी ख्वाहिशें मेरे आने से पूरी हो गई, पर क्या तुम जानते हो मेरे भीतर भी एक अनकहा अभाव था जिसका नाम मैंने कभी नहीं लिया। मुझे भी चाहिए था ऐसा मन जहां बिना मांगे ठहर सकूं, ऐसी आंख जो मेरे मौन को पढ़ ले और ऐसा स्पर्श जो मेरी थकान से पहले मेरा नाम ले। अगर कोई कुम्हार होता और वो सचमुच दो पुतले तोड़कर तीसरी मूर्ति गढ़ सकता, तो वो मूर्ति मैं नहीं बनाती, तो वो मूर्ति मैं नहीं बनाती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है कश्मीर की गली, आवाज है आशा भोसले और मोहम्मद रफी की।

तुम कहते हो जिंदगी अधूरी होकर भी सच्ची हो तो सुंदर होती है। तुम कहते हो जिंदगी अधूरी होकर भी सच्ची हो तो सुंदर होती है। तो सुनो, मैंने तुम्हारे साथ अपनी अधूरी सच्चाइयों को पूरा होते देखा है। मेरी चुप्पियां तुम्हारे आवाज में अपना घर पा गई हैं। तुम्हारा गर्व मुझे भारी नहीं लगता, क्योंकि वो अधिकार से नहीं संवेदना से उपजा है, और मेरे पास तुम्हारा सुकून और मेरा सुकून तुम्हारे पास किसी वचन की तरह नहीं, एक विश्वास की तरह रहता है। तुमने कहा कुछ पुरुष प्रेम कह नहीं पाते पर लिख सकते हैं। तुमने कहा कुछ पुरुष प्रेम कह नहीं पाते पर लिख सकते हैं। तुम कहते हो जिंदगी अधूरी होकर भी सच्ची हो तो सुंदर होती है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयति। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है दो दूनी चार, आवाज है किशोर कुमार की।

आप सुन रहे हैं निशिगंधा और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयति और अब जो गीत आप सुनेंगे फिल्म का नाम है हंसते जख्म आवाज है लता मंगेशकर की

अरे वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी एक बजे एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 1:10 पर। कार्यक्रम होगा गीत सुहाने। जिस गीत के साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं, फिल्म का नाम है महबूब की मेहंदी, आवाज है मोहम्मद रफी की। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: The United Kingdom Free Trade Agreement has
2: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
1: And together becoming a force multiplier.
0: श्री गोयल 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर हैं। इस दौरान वे 15 जुलाई से लागू होने वाले भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि आत्मनिर्भर देश संकट काल में आर्थिक स्थिरता बनाए रखने और विकास प्राथमिकताएं पूरी करने में अधिक सक्षम होता है। राष्ट्रपति ने सैन्य इंजीनियरी सेवा के 2023 और 2024 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आत्मनिर्भरता राष्ट्रों के लिए रणनीतिक आवश्यकता बन गई है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये स्पष्ट हो गया कि स्वदेशी रक्षा क्षमताएं, उन्नत प्रौद्योगिकी और मजबूत घरेलू औद्योगिक आधार किसी राष्ट्र की परिचालन तत्परता और रणनीतिक प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए अति आवश्यक हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि सैन्य इंजीनियरी सेवा देश के रक्षा ढांचे की रीढ़ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय मामलों की विशेष सलाहकार नीदरलैंड की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि मुलाकात के दौरान उन्होंने चर्चा की कि भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना किस प्रकार वित्तीय सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाकर जीवन सुगमता बढ़ा रही है और लोगों को व्यापक स्तर पर सशक्त बना रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पूरे विश्व में साझेदार देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने को प्रतिबद्ध है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने कहा कि देश में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 अन्य घायल हो गए हैं। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र दान हेराफेरी मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ पहली प्राथमिकी दर्ज की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल एसआईटी की सिफारिशों के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत के आधार पर श्रीराम जन्मभूमि पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। लखनऊ संभाग के आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता वाली एसआईटी ने मंगलवार को सरकार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी थी जिसमें कड़ी सिफारिशें की गई थी। इसके बाद बृहस्पतिवार को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा की अनंतिम उत्तर कुंजी को चुनौती देने का विंडो खोल दिया है। मेडिकल कॉलेजों में दाखिले की ये परीक्षा इसी महीने 21 तारीख को आयोजित हुई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी अब www.neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती स्वीकार होने पर ये शुल्क वापस कर दिया जाएगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप ई मुकाबले में कुरासाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इक्वाडोर और जर्मनी आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 1:30 बजे से खेले जाएंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत सुहाने लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और गीत सुहाने में जो पहला गीत आप सुनेंगे आवाज है मुकेश और सुमन कल्याणपुर की। फिल्म का नाम है मेरी सूरत तेरी आंखें।

हवाओं ने सिखाया कि झुकना जरूरी है, हवाओं ने सिखाया कि झुकना जरूरी है, हर शाख को मौसम में ढलना जरूरी है। जो वक्त की धूप से आंखें चुराता रहा, जो वक्त की धूप से आंखें चुराता रहा, उसे अपने ही साए में जलना जरूरी है। जो कल की लकीरों को तकता ही बैठा हो, जो कल की लकीरों को तकता ही बैठा हो, उसे आज की मिट्टी में चलना जरूरी है। सफर में अगर भीड़ ही रास्ता तय करे, सफर में अगर भीड़ ही रास्ता तय करे, तो खुद से अलग राह चुनना जरूरी है। मैंने सीखा है टूट कर भी यही बात कि हर बार नहीं पर बदलना जरूरी है। मैंने सीखा है टूट कर भी यही बात कि हर बार नहीं पर बदलना जरूरी है। हवाओं ने सिखाया कि झुकना जरूरी है, हर शाख को मौसम में ढलना जरूरी है, हर शाख को मौसम में ढलना जरूरी है। और अब जो गीत आप सुनेंगे, आवाज है आशा भोसले और मोहम्मद रफी की, फिल्म का नाम है जमाने को दिखाना है।

कभी ठहर कर तो याद करोगे मुझे, कभी ठहर कर तो याद करोगे मुझे, वक्त के पन्नों में लिखा एक नाम कहोगे मुझे। कभी ठहर कर तो याद करोगे मुझे, वक्त के पन्नों में लिखा एक नाम कहोगे मुझे। मैं कोई इल्जाम नहीं ना कोई गिला बनी, मैं कोई इल्जाम नहीं ना कोई गिला बनी, बस एक आदत की तरह याद करोगे मुझे। मेरे अल्फाज तुम्हारे साथ ना चल पाए तो क्या, मेरे अल्फाज तुम्हारे साथ ना चल पाए तो क्या, मेरी आंखों से ही सही देखोगे मुझे। ढलती सांझ में जब सवाल उठेंगे कहीं, ढलती सांझ में जब सवाल उठेंगे कहीं, एक अधूरी सी कहानी सुनाओगे मुझे, एक अधूरी सी कहानी सुनाओगे मुझे, जो कह न सकी सामने वो लिखती रही, भीड़ में भी अलग सी पाओगे मुझे, भीड़ में भी अलग सी पाओगे मुझे, कभी ठहर कर तो याद करोगे मुझे, वक्त के पन्नों में लिखा एक नाम कहोगे मुझे। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है भाभी, आवाज है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

मेगाहर्ट्ज़ पर। और गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं जयती। और गीत सुहाने में अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है मेरा साया, आवाज है आशा भोसले की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

आप सुन रहे हैं गीत सुहाने। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है मौसम और आवाज है लता मंगेशकर की।

मैं लिख रही थी, वो पढ़ रहा था, बड़ा अजीब था वो। मैं लिख रही थी, वो पढ़ रहा था, बड़ा अजीब था वो। जो अपने हाथों की लकीरें बदल रहा था वो। मेरे हर शब्द में अपना ही पता ढूंढता था, मेरे हर शब्द में अपना ही पता ढूंढता था, मेरे सवालों से ही उत्तर गढ़ रहा था वो। मैंने जो छोड़ा अधूरा उसी को पूरा समझा, मैंने जो छोड़ा अधूरा उसी को पूरा समझा, मेरी कमी को भी कायदा कर रहा था वो। वक्त ने जब भी हमें आमने सामने रखा, वक्त ने जब भी हमें आमने सामने रखा, घड़ी की सुइयों से आगे बढ़ रहा था वो। मैं लिख रही थी, वो पढ़ रहा था, बड़ा अजीब था वो। जो अपने हाथों की लकीरें बदल रहा था वो, जो अपने हाथों की लकीरें बदल रहा था वो। वक्त आ चला है, एक बार फिर आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद 2 बजे FM गोल्ड पर आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 2:10 पर, कार्यक्रम होगा रात सुरमई। छोड़े जाते हैं क्रांति फिल्म के इस गीत के साथ, आवाज है लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: The United Kingdom Free Trade Agreement has...
2: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
1: And together becoming a force multiplier.
0: श्री गोयल 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर हैं। इस दौरान वे 15 जुलाई से लागू होने वाले भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 जून तक सेशल्स की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री की ये सेशल्स की दूसरी यात्रा होगी। इससे पहले उन्होंने वर्ष 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्मिनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि देश में 2 शक्तिशाली भूकंप से मृतकों की संख्या बढ़कर 188 हो गई है, जबकि 1520 लोग इसमें घायल हुए हैं। मलबे में अभी भी 200 लोग फंसे हुए हैं। श्री रोड्रिगेज ने बताया कि राजधानी काराकास से लगभग 160 किलोमीटर पश्चिम में 7.2 और 7.5 की तीव्रता के इन 2 शक्तिशाली भूकंप में करीब 2927 परिवार बेघर हो गए हैं। दूसरा भूकंप सन 1900 के बाद वेनेजुएला में आया सबसे शक्तिशाली भूकंप है। राजधानी काराकास के उत्तर में तटीय क्षेत्र ला गुआयरा में सबसे अधिक क्षति और जानमाल का नुकसान हुआ है। श्री रोड्रिगेज ने बताया कि ला गुआयरा में 250 इमारतें क्षतिग्रस्त या नष्ट हुई हैं। इस बीच वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपात स्थिति घोषित कर दी है। सुश्री रोड्रिगेज ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए अगले आदेश तक कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियां स्थगित रखने की घोषणा की। उन्होंने सबसे प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं भी सक्रिय कर दिया। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भूकंप के बाद भारत द्वारा एकजुटता और सहायता की पेशकश पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुश्किल घड़ी में ये भारत और वेनेजुएला के लोगों के बीच सहयोग की भावना के अनुरूप उठाया गया कदम है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणियों का स्वागत किया, जिसमें उन्होंने भूकंप से जानमाल की क्षति पर गंभीर संवेदना व्यक्त करते हुए भारत द्वारा राहत कार्यों में सहायता की तत्परता व्यक्त की थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र दान हेराफेरी मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ पहली प्राथमिकी दर्ज की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल SIT की सिफारिशों के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत के आधार पर श्री राम जन्मभूमि पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। लखनऊ संभाग के आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता वाली SIT ने मंगलवार को सरकार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कड़ी सिफारिशें की गई थी। इसके बाद बृहस्पतिवार को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के दक्षिणी जिलों में छिटपुट बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। राज्य के उत्तर जिलों में भी बारिश की संभावना है, जिससे नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है और भूस्खलन हो सकता है। राज्य के उत्तरी उप हिमालयी जिलों में बारिश और तेज होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कोलकाता, उत्तर और दक्षिण 24 परगना, पूर्वी मेदिनीपुर, बांकुरा, पुरलिया, झाड़ग्राम में आकाशीय बिजली गिरने का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani. The news read by Ashish. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement will act as force multiplier to support the global economy. Addressing the India Global Forum UK-India Week in London yesterday, Mr. Goyal said free trade agreement with the United Kingdom is the most comprehensive agreement that India has entered into so far. The minister reached the UK on a three-day visit to review the preparedness of both countries for the implementation of the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, which will enter into force from 15th of next month. Mr. Goyal added that the agreement will further integrate both countries into global value chains and open new avenues for economic cooperation and growth. Venezuela's National Assembly President Jorge Rodriguez announced that the death toll from two powerful earthquakes has risen to 188 people, with 1,520 others injured and 200 still trapped. Mr. Rodriguez stated that at least 2,927 families lost their homes after powerful back-to-back 7.2 and 7.5 magnitude earthquakes struck around 160 kilometers west of the capital Caracas. The second earthquake was the strongest to hit Venezuela since 1900. He added that 250 buildings, primarily in La Guaira, have been damaged or destroyed. Meanwhile, Venezuela's acting president, Delcy Rodriguez, has declared a state of emergency. Addressing the nation, Ms. Rodriguez announced the suspension of classes and non-essential activities until further notice. She also activated the public and private health networks in the most affected areas. The Director General of Civil Aviation yesterday said that it was investigating an incident when an Air India plane came in front of an Indigo aircraft on the same taxiway at the Ahmedabad airport yesterday. According to DGCA, after clearing the runway, it was given taxi clearance to proceed to the international apron via taxiway P and taxiway G. The DGCA said that the aircraft continued on taxiway P instead of turning onto taxiway G towards the international apron. The crew immediately stopped the aircraft. It noted that approximately at the same time, an Indigo aircraft operating flight from Ahmedabad to Mumbai was taxiing on the same taxiway for departure. The ministry added that the Indigo aircraft also stopped and both aircraft maintained a safe distance from each other. It noted that the Air India aircraft was later towed to its parking stand. The Ministry of Jal Shakti has extended the timeline for citizen feedback on Jal Sanchay Jan Bhagidari 2.0 portal until the 31st of July. The ministry said that the portal provides a platform for citizens across the country to share their feedback on water conservation, rainwater harvesting, groundwater recharge and storage works reported under the Jal Sanchay Jan Bhagidari 2.0 initiative. Through this, citizens who wish to provide feedback on the assets created under the initiative may submit their observations on portal. The Maharashtra government will invoke the stringent Maharashtra Control of Organized Crime Act, if applicable, against those arrested in the Pune Hooch tragedy that claimed 22 lives. At least 22 people lost their lives between 26th and 29th last month after consuming spurious country liquor laced with high levels of toxic methanol in Pugewadi, the Pori areas of Pimpri Chinchwad in Pune. Replying to a calling attention motion moved by MLC Amit Gorkhe, Minister of State for Home Yogesh Kadam told the Legislative Council yesterday that all accused in the case have been arrested and action has been taken against 13 personnel of the state excise and police departments. He said the factory from where ethanol was sourced was licensed, but action had been initiated against those who illegally diverted the chemical for manufacturing spurious liquor. Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps, Navy, has stressed that the vessels transiting the Strait of Hormuz must use only the routes officially designated and announced by Iranian authorities. It made the remarks in a statement published on the IRGC's official news outlet, Sepah News, while warning that ships' movement through other routes is dangerous and prohibited. And that is the end of this news bulletin.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर रात सुरमई लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। रात सुरमई में जो पहला गीत आप सुनेंगे आवाज है लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम है फकीरा। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

साथी कुछ लिखते हैं, चल साथी कुछ लिखते हैं, तू लिख दे मेरी हर बातें, मैं तेरी कहानी लिखती हूँ। चल साथी कुछ लिखते हैं, अदला बदली करके हम तुम शब्दों के महल बनाते हैं, अदला बदली करके हम तुम शब्दों के महल बनाते हैं, मेरा रंग है नीला पीला, तुम लाल सुनहरी ले लेना, मेरा रंग है नीला पीला, तुम लाल सुनहरी ले लेना, मैं गंगा जमुना तट पर नाचूं, तुम सातों छोर समंदर लेना, मैं तेरा गांभीर्य लिखूंगी, तू मेरी चंचलता लिखना, थोड़ी सी अल्हड़ता लिखना, हंसना रोना और मचलना, सब लिखना आहिस्ता आहिस्ता, देखो कुछ भी भूल न जाना, शब्दों की माला गूंद गूंद कर मेरा तेरा मेल सजाना, और मैं तेरी बातें लिखकर साथी पूरी कहानी कर दूंगी, तू मेरी बातें लिख साथी, मैं तेरी कहानी लिखती हूँ, चल साथी कुछ लिखते हैं, चल साथी कुछ लिखते हैं, तू लिखते मेरी हर बातें, मैं तेरी कहानी लिखती हूँ, मैं तेरी कहानी लिखती हूँ। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है मौसम, आवाज है भूपिंदर की।

गुलाब में यादें देकर लौट गया, गुलाब में यादें देकर लौट गया, अपने शहर की ओर मुड़ गया, पीछे छोड़ आया मेरे आंगन में बिखरी हुई खामोशियों की पंखुड़ियां। उसने गुलाब थमाया, जैसे किसी ने समय की हथेली पर सुगंध रख दी हो, और कहा कुछ नहीं, बस नजरें झुका ली, जैसे विदा शब्दों से नहीं आंखों से होती हो। वो लौट गया फिर मिलने के वादे के साथ, वादे जो रेल की खिड़की से हवा में लहराते रुमाल से होते हैं, दिखते रहते हैं देर तक पर छूने में नहीं आते। आंखों में आंसुओं का समंदर लेकर मैं खड़ी रही स्टेशन की उस रेखा पर, जहां से रास्ते अलग होते हैं और मन एक ही दिशा में अटका रह जाता है। उसका शहर अब मेरे भीतर बसता है, हर गली में उसकी आवाज की परछाई और हर मोड़ पर उसके हंसने की ध्वनि। गुलाब की पंखुड़ियां मेरे किताबों के बीच सूख गई हैं, पर उनकी सुगंध अब भी हर रात मेरे तकिए में लौट आती है, पर उसकी सुगंध अब भी हर रात मेरे तकिए में लौट आती है। गुलाब में यादें देकर लौट गया, अपने शहर की ओर मुड़ गया। और अब जो गीत आप सुनेंगे, आवाज है लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम है मेरा साया।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर।

माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और रात सुरमई में आपके साथ हूं मैं जयति। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है भाभी, आवाज है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

वह प्रेम जो शोर नहीं करता, वह प्रेम जो शोर नहीं करता, जो अपने होने का दावा नहीं लिखता, बस अचानक समय की छत फांद कर आ खड़ा होता है दरवाजे पर। हाथों में मेहनत की गर्माहट और आंखों में ठहरी हुई प्रार्थनाएं, कोई घोषणा नहीं, कोई प्रश्न नहीं, सिर्फ एक उड़ान जिसमें बैठा था विश्वास कि जन्मदिन केवल तारीख नहीं होता, वह किसी आत्मा की स्वीकारोक्ति भी होती है। वो आया जैसे मंदिर में दीप जलाने को आता है, चुपचाप श्रद्धा से भरा, अपने भीतर की सारी रोशनी लेकर, और लौटा भी उसी मौन में, जैसे दुआ पूरी होने के बाद घंटी बजाए बिना कोई चला जाता है, जैसे दुआ पूरी होने के बाद घंटी बजाए बिना कोई चला जाता है। वह प्रेम जो शोर नहीं करता, जो अपने होने का दावा नहीं लिखता। आप सुन रहे हैं रात सुरमई, और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है हंसते जख्म, आवाज है मोहम्मद रफी और बलवीर की।

ही पड़ा ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है ये माना मेरी जान मोहब्बत।

और अब वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें हमसे थोड़ी ही देर बाद यानी 3 बजे एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार तो फिर मिलने के वादे के साथ और जिस गीत के साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं फिल्म का नाम है अर्पण आवाज है लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर नमस्कार

0: उधर बैठे क्या सोच रहे थे?
1: सोच रहा था, मैं गम के अंधेरे में डूबा हुआ था, तुम अचानक उजाला बनकर आ गए, मुझे जीने की नई उम्मीद, नया सहारा मिल गया। इतने पास आकर कहीं तुम मुझसे दूर न हो जाओ।
0: अनिल, वो देखो सूरज की किरणें जब इन बर्फीली चोटियों पर गिरती हैं, तो बर्फ पिघल कर नदी का रूप धारण करती है, फिर वो नदी पहाड़ों, जंगलों और मैदानों को चीरती हुई जाकर समंदर की गोद में समा जाती है। मैं भी उस नदी की तरह तुम्हारे प्यार के समंदर में समा जाऊंगी। अब तुम्हें छोड़कर कहां जाऊंगी मैं?

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: The United Kingdom Free Trade Agreement has
2: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
1: And together becoming a force multiplier.
0: श्री गोयल 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर हैं। इस दौरान वे 15 जुलाई से लागू होने वाले भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 जून तक सेशल्स की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री की ये सेशल्स की दूसरी यात्रा होगी। इससे पहले उन्होंने वर्ष 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमीनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि देश में 2 शक्तिशाली भूकंप से मृतकों की संख्या बढ़कर 188 हो गई है, जबकि 1,520 लोग इसमें घायल हुए हैं। मलबे में अभी भी 200 लोग फंसे हुए हैं। श्री रोड्रिगेज ने बताया कि राजधानी काराकास से लगभग 160 किलोमीटर पश्चिम में 7.2 और 7.5 की तीव्रता के इन 2 शक्तिशाली भूकंप में करीब 2,927 परिवार बेघर हो गए हैं। दूसरा भूकंप सन 1900 के बाद वेनेजुएला में आया सबसे शक्तिशाली भूकंप है। राजधानी काराकास के उत्तर में तटीय क्षेत्र ला गुआइरा में सबसे अधिक क्षति और जानमाल का नुकसान हुआ है। श्री रोड्रिगेज ने बताया कि ला गुआइरा में 250 इमारतें क्षतिग्रस्त या नष्ट हुई हैं। इस बीच वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपात स्थिति घोषित कर दी है। सुश्री रोड्रिगेज ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए अगले आदेश तक कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियां स्थगित रखने की घोषणा की। उन्होंने सबसे प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं भी सक्रिय कर दी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र दान हेराफेरी मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ पहली प्राथमिकी दर्ज की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल SIT की सिफारिशों के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्णमोहन की लिखित शिकायत के आधार पर श्रीराम जन्मभूमि पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। लखनऊ संभाग के आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता वाली SIT ने मंगलवार को सरकार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कड़ी सिफारिशें की गई थी। इसके बाद बृहस्पतिवार को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए पश्चिम बंगाल में, हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। ICC महिला 2020 विश्व कप में मैनचेस्टर के एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड में ग्रुप ए के मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। भारत ने 137 रन का लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया। उसने 16 ओवर और 5 गेंदों में 5 विकेट पर 139 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हुआ है 3:10:30। आप हैं अपने ही दोस्त रूपा धवन के साथ कार्यक्रम, आप ही का पसंदीदा कार्यक्रम हमराही। हमराही में आपके साथ चल रही हूं मैं आज, आप ही की दोस्त, आप ही की अपनी रूपा धवन। नमस्कार।

जी हाँ जनाब, हम तो मान ही गए हैं और आप भी मान ही गए होंगे। जी हाँ, जब हम राही साथ साथ चलते हैं तो एक दूसरे का कहना तो मानना ही पड़ता है और लाजमी भी जो होता है। रात का समा वाकई बहुत खूबसूरत होता है। दिन भर का शोर जब थम जाता है तब रात के इस समय में सुकून के पल और मन में कई बातों और कहानियाँ साथ साथ दिमाग में तैरने लगती है और फिर ऐसे में कोई ना कोई कहानी

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

आप जुड़ चुके हैं मेरे साथ यानी रूपा के साथ. कार्यक्रम है हमराही और समय हुआ है 3:29 रात के. आधी रात और आधा दिन और ये समय बेहद खूबसूरत बेहद प्यारा हमराही का सफर और साथ चल रहे हैं हम आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर.

दिल में ढेर सारी बातें, नींद आंखों से कोसों दूर है, और ऐसे में जब साथ हूं मधुर और कर्णप्रिय गीत, तो ये रूहानी गीत सहज ही हमारे दिलों में उतर जाते हैं। दर्द फिल्म का अभी एक नगमा आपने सुना लता जी की आवाज में, और आइए अब सुनते हैं सूरज फिल्म से ये कर्णप्रिय गीत।

सूरज फिल्म का ये रूहानी गीत और स्वर थे इसमें मोहम्मद रफी साहब और सुमन कल्याणपुर का. और अगला गीत सुनवाते हैं आपको, फिल्म है तीसरा कौन, स्वर लता जी और मुकेश साहब का.

साथियों, रात और चांद का रिश्ता सदियों पुराना है। जब भी ये दोनों साथ होते हैं, जज्बात अपने आप अल्फाजों में ढल जाते हैं। अगर प्रेम कहानी की बात करें तो प्रेम कहानी में चांद की एक अपनी ही खास जगह है।

किशोर साहब और लता जी का ये दिलकश नगमा अभी आपने सुना देवता फिल्म से। जी चाहता है तुमसे प्यारी सी बात हो, जी चाहता है तुमसे प्यारी सी बात हो, हंसी चांद तारे हो, लंबी सी बात हो, और दिल दिल बस सिर्फ और सिर्फ ये कहे।

स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से. और लीजिए जनाब, वक्त तो इतनी जल्दी जल्दी भाग रहा है ना कि कब 3 से 4 बजने को आए पता भी नहीं चला. रूहानी संगीत का कुछ ऐसा ही जादू होता है. फिलहाल हम और आप बात कर रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर. आप हैं अपनी दोस्त रूपा धवन के साथ हमराही कार्यक्रम में. तुझे देखा तो पल में ही सदियां जीली, तुझे देखा तो पल में ही सदियां जीली, तुझे चाहा तो दिल ने धड़कना सीख लिया. इबादत में तो लोग खुदा को ढूंढते हैं, इबादत में तो लोग खुदा को ढूंढते हैं, मैंने तुझको पाकर ही सजदा करना सीख लिया. ये गीत आज के हमराही की आखिरी पेशकश. सुनते हैं यही गीत एन इवनिंग इन पेरिस से मोहम्मद रफी साहब और आशा जी के स्वर में.

जी हाँ, लौटने का वक्त नहीं है अभी. जी हाँ, लौटेंगे दोबारा से, फिर से आपके साथ जुड़ेंगे और लेकर आएंगे आपकी खिदमत में अरुणिमा कार्यक्रम. फिलहाल रूपा इजाजत चाहती है, तब तक के लिए विदा दीजिए. और सुनेंगे आप थोड़ी ही देर में, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में समाचार. नमस्कार.

0: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। गृह मंत्रालय ने बताया कि मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी द्वारा आयोजित बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों राज्य सरकारों और मादक पदार्थ कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि देश में मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा और उन्हें मजबूत करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026-2029 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। हितधारकों के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद इसे तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 जून तक सेशल्स की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री की यह सेशल्स की दूसरी यात्रा होगी। इससे पहले उन्हें वर्ष 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के दो युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्मेनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: The United Kingdom Free Trade Agreement has...
2: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
1: And together becoming a force multiplier.
0: वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि देश में दो शक्तिशाली भूकंप से मृतकों की संख्या बढ़कर 188 हो गई है, जबकि 1520 लोग इसमें घायल हुए हैं। मलबे में अभी भी 200 लोग फंसे हुए हैं। श्री रोड्रिगेज ने बताया कि राजधानी काराकास से लगभग 160 किलोमीटर पश्चिम में 7.2 और 7.5 की तीव्रता के इन दो शक्तिशाली भूकंप में करीब 2927 परिवार बेघर हो गए हैं। दूसरा भूकंप सन 1900 के बाद वेनेजुएला में आया सबसे शक्तिशाली भूकंप है। राजधानी काराकास के उत्तर में तटीय क्षेत्र ला गुआइरा में सबसे अधिक क्षति और जानमाल का नुकसान हुआ है। श्री रोड्रिगेज ने बताया कि ला गुआइरा में 250 इमारतें क्षतिग्रस्त या नष्ट हुई हैं। इस बीच वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपात स्थिति घोषित कर दी है। सुश्री रोड्रिगेज ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए अगले आदेश तक कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियां स्थगित रखने की घोषणा की। उन्होंने सबसे प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं भी सक्रिय कर दी हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने कहा है कि मध्य पूर्व में युद्ध विराम और होर्मुज जल डमरू मध्य फिर से खोलने में हुई प्रगति से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर मंडरा रहे जोखिम में कमी आई है। IMF के संचार निदेशक जूली कोजैक ने वॉशिंगटन में एक प्रेस वार्ता में कहा कि हाल के संघर्ष से वैश्विक अर्थव्यवस्था की मजबूती की जांच हुई, पर कमोडिटी बाजार और वित्तीय स्थितियां मोटे तौर पर स्थिर बनी हुई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र दान हेराफेरी मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ पहली प्राथमिकी दर्ज की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल SIT की सिफारिशों के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्णमोहन की लिखित शिकायत के आधार पर श्रीराम जन्मभूमि पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। भारत आज बेलफास्ट में मेजबान आयरलैंड के साथ पहला 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलेगा। भारतीय समय अनुसार मैच शाम 6 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Ashish Abraham. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement will act as force multiplier to support the global economy. Addressing the India Global Forum, UK-India Week in London yesterday, Mr. Goyal said, Free Trade Agreement with the United Kingdom is the most comprehensive agreement that India has entered into so far. The minister reached the UK on a three-day visit to review the preparedness of both countries for the implementation of the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement, which will enter into force from 15th of next month. Mr. Goyal added that the agreement will further integrate both countries into global value chains and open new avenues for economic cooperation and growth. PM Modi will be on a state visit to Seychelles from 27th to 29th of this month to attend the Global Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honour. PM last visited Seychelles in 2015. External Affairs Ministry said in a statement that a contingent of the Indian Defence Forces along with two Indian Navy ships will participate in the celebrations. During the visit, PM will hold talks with President of Seychelles, Dr. Patrick Hermini, and review the full spectrum of bilateral cooperation and exchange views on regional and international issues of mutual interest. Prime Minister will also address the National Assembly of Seychelles and interact with members of the Indian diaspora. Venezuela's National Assembly President Jorge Rodriguez announced that the death toll from two powerful earthquakes has risen to 188 people, with 1,520 others injured and 200 still trapped. Mr. Rodriguez stated that at least 2,927 families lost their homes after powerful back-to-back 7.2 and 7.5 magnitude earthquakes struck around 160 kilometers west of the capital, Caracas. The second earthquake was the strongest to hit Venezuela since 1900. He added that 250 buildings, primarily in La Guaira, have been damaged or destroyed. Meanwhile, Venezuela's acting president, Delcy Rodriguez, has declared a state of emergency. Addressing the nation, Ms. Rodriguez announced the suspension of classes and non-essential activities until further notice. She also activated the public and private health networks in the most affected areas. Acting President Rodriguez has acknowledged India's solidarity following the earthquakes, stating that it aligns with the spirit of cooperation between the people of India and Venezuela in times of difficulty. She welcomed PM Modi's remarks, in which he expressed condolences and India's willingness to support relief efforts in the wake of the earthquakes, severe consequences. UP government has taken strict action in the Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra donation case, with the first FIR registered against 8 named accused and other unidentified persons following recommendations by the special investigation team. The FIR with crime number 90/2026 names Avinash Shukla, Anukalp Mishra, Lavkush Mishra, Manish Kumar Yadav, Karunesh Pandey, Ramashankar Mishra, Subhash Srivastava and Sri Ram Shankar Yadav alias Tinnu, along with other unidentified accused. National Testing Agency has opened a window yesterday for candidates to challenge the provisional answer keys for the NEET 2026 re-exam, which was held on the 21st of this month. In a social media post, the NTA announced that the answer keys are now available at www.neet.nta.in. Students can challenge questions for a fee of 200 rupees per question until the 28th of this month. This fee is fully refundable if the challenge is accepted. In the ICC Women's T20 World Cup, India defeated Bangladesh by 5 wickets in a Group A clash in Manchester, England. After winning the toss and electing to bat first, Bangladesh posted 136 runs for the loss of 8 wickets in the stipulated 20 overs. In reply, India comfortably overhauled the target, losing 5 wickets in 16.5 overs, riding on Shefali Verma's 53 runs off 34 balls. Shefali Verma was adjudged player of the match. In the US Open Badminton Tournament, Indian players Tanvi Sharma, Devika Sihag and Kidambi Srikanth have advanced to the singles pre-quarterfinals events in Fullerton. And that is the end of this news bulletin.

साथियों, जीवन में सकारात्मक सोच हमारा आत्मबल बढ़ाती है, जीवन को नई दिशा देती है। और हमें क्या करना है, हमें जीवन में इसी आत्मविश्वास और आत्मबल के साथ हर नए सफर को एक नए जोश के साथ आगे बढ़कर जीना है, खुशियों को दोनों हाथों से थामना है। स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हुआ है सुबह के 4:11:39। आप हैं अरुणिमा में अपनी ही दोस्त रूपा धवन के साथ, तो स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार, सुप्रभात। रात के गहन अंधियारे को चीरती हुई सूरज की किरणें धीरे धीरे पृथ्वी पर आ रही हैं और सभी को इस रोशनी में सराबोर कर रही हैं। तो क्यों ना इस जिंदगी से मुलाकात कर ली जाए,

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर. समय हुआ है 4:24 और 1 सेकंड. आप हैं रूपा के साथ. तो दोस्तों, कभी कभी हम जिंदगी की आपाधापी में ये भूल जाते हैं.

0: जानते हैं कि हमारे आसपास कितने ऐसे लोग हैं जो खामोशी से दुनिया को बेहद खूबसूरत बना रहे हैं, जैसे राह चलते किसी बेजुबान को सहला देना या किसी उदास चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर देना। खैर, हमें भी इसी तरह से अपनी राहों पर चलते जाना है और घबराना घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है।
1: I'm not a man from the past, but I'm functioning. I'm right now. Tomorrow is another day. A wave after wave of excitement comes to me, of new things within me, within my, as I get up in the morning, at times. If there's a pain or a sorrow, I forget it.

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अरुणिमा कार्यक्रम में। अरुणिमा है उम्मीद की पहली किरण जो हर रात के बाद नया सवेरा लाती है, हौसलों से जो दिल रोशन रखते हैं जिंदगी भी उनके लिए गीतों को गुनगुनाती है। रूपा के साथ फिलहाल आप हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। आइए सुनते हैं ड्रीम गर्ल फिल्म का ये गीत, टाइटल सॉन्ग किशोर साहब के स्वर में।

हर दिन के साथ साथ प्रकृति भी नए रंगों को बुनती है। इसका हर कण एक अलग किस्सा बयां करता है, एक ऐसा किस्सा जिसकी दास्तान हर बूटे पर लिखी होती है और आपकी जिंदगी को हर रंगों में संवारने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी रहती है।

सूरज की पीली रोशनी के साथ प्रकृति का कण कण पत्ता पत्ता अपनी अपनी कहानी कहते हैं। रात का सारा खेल प्रकृति की बाहों में समा जाता है। वहीं कलकल करते झरने भी अपनी बातें बताते हैं।

राजा हो या रंक, सभी को अपने जीवन में जिंदगी के उतार चढ़ावों से गुजरना ही पड़ता है, मुश्किलों को साथ में लेकर चलना पड़ता है। राजा हरिश्चंद्र और तारामती जी की फिल्म से ये गीत अभी आपने सुना। मोहम्मद रफी साहब के स्वर में जीवन की एक कड़वी सच्चाई को बयां करता ये गीत, बेहद ही खूबसूरत आवाज में बखूबी दर्शाया, दिखाया शब्दों द्वारा मोहम्मद रफी साहब ने। साथियों, लेकिन जिंदगी में कोई ना कोई एक ऐसा अपना भी होता है जो आपके सुख दुख में आपकी छांव बनकर चलता है, आपका साया बनकर चलता है। कोई ना कोई तो किसी ना किसी के जीवन में जरूर होता है।

जिंदगी है तो हार जीत का खेल भी चलता ही रहता है। मुश्किलों का सामना करना मुश्किल होता है पर नामुमकिन नहीं। जहां मुश्किलें हैं वहां मुस्कुराहटें भी हैं और जीत की खुशी भी है, उमंगें भी हैं।

खुशनुमा बहार के साथ हमारे मन में नई उमंगों को जगा देती है ये बहार। ठंडी हवा के झोंके मानो कानों में मुस्कुराकर कुछ कहकर आगे बढ़ जाते हैं, आने वाले पल का स्वागत करने का संदेश दे रहे हों जैसे।

अरुणिमा से विदा लेती है रूपा, फिर से भोर सुहानी में आपके साथ मुलाकात होगी जल्दी ही। तब तक आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड, और कुछ ही देर में सुनेंगे समाचार। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सेशल्स जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री की सेशल्स की ये दूसरी यात्रा है। इससे पहले वो वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के दो युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी सेशल के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मिनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय मामलों की विशेष सलाहकार नीदरलैंड की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। श्री मोदी ने बताया कि उन्होंने इस बात की चर्चा की कि भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना किस प्रकार वित्तीय सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाकर जीवन की सुगमता बढ़ा रही है और लोगों को व्यापक स्तर पर सशक्त बना रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पूरे विश्व में साझेदार देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को समन्वय केंद्र की 10वीं बैठक होगी। गृह मंत्रालय ने बताया कि मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थ कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। देश में मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा और उन्हें मजबूत करने के उपायों पर चर्चा होगी। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026 से 2029 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। ये दस्तावेज मादक पदार्थों की मांग और आपूर्ति में कमी लाने और पुनर्वास पर केंद्रित समन्वित उपायों से मादक पदार्थों के खतरे से निपटने की भविष्य की योजना प्रदान करेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में भारत वैश्विक मंच में ब्रिटेन भारत सप्ताह कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: The United Kingdom Free Trade Agreement has...
2: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
1: And together becoming a force multiplier.
0: वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रॉड्रिक्स ने कहा है कि देश में दो शक्तिशाली भूकंप से मृतकों की संख्या बढ़कर 188 हो गई है, जबकि 1,520 लोग इसमें घायल हुए हैं। मलबे में अभी 200 लोग फंसे हुए हैं। श्री रॉड्रिगेज ने बताया कि राजधानी काराकस से लगभग 160 किलोमीटर दूर 7.5 की तीव्रता के इन दो शक्तिशाली भूकंप में करीब 2,927 परिवार बेघर हो गए हैं। दूसरा भूकंप सन 1900 के बाद वेनेजुएला में आया सबसे शक्तिशाली भूकंप है। राजधानी काराकास के उत्तर में तटीय क्षेत्र ला गुआयरा में सबसे अधिक क्षति और जानमाल का नुकसान हुआ है। श्री रॉड्रिगेज ने बताया कि ला गुआयरा में 250 इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं या नष्ट हो गई हैं। इस बीच वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज ने आपात स्थिति की घोषणा कर दी है। राष्ट्रपति रॉड्रिगेज ने भूकंप के बाद भारत द्वारा एकजुटता और सहायता की पेशकश पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुश्किल घड़ी में ये भारत और वेनेजुएला के लोगों के बीच सहयोग की भावना के अनुरूप उठाया गया कदम है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणियों का स्वागत किया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि मध्य पूर्व में युद्ध विराम और हॉर्मुज जलडमरू मध्य फिर से खोलने में हुई प्रगति से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर संकट में कमी आई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के उत्तर कुंजी को चुनौती देने की विंडो खोल दी है। ये परीक्षा इसी महीने 21 तारीख को आयोजित हुई थी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में कुरासाओ ने आइवरी कोस्ट को और इक्वाडोर ने जर्मनी को हरा दिया है। प्रतियोगिता में इस समय जापान और स्वीडन तथा ट्यूनिशिया और नीदरलैंड का मैच जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani. The news read by Ashish Abraham. Prime Minister Narendra Modi met Queen Maxima of the Netherlands, the UN Secretary General's Special Advocate for Financial Health, in New Delhi yesterday. In a social media post, Mr. Modi stated that during the meeting, they discussed how India's digital public infrastructure-led revolution is making financial services more accessible and affordable, enhancing ease of living and empowering people at scale. The PM added that India remains committed to sharing its experience with partner countries across the world. PM Modi will be on a state visit to Seychelles from 27th to 29th of this month to attend the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honour. PM last visited Seychelles in 2015. External Affairs Ministry said in a statement that a contingent of the Indian Defence Forces along with two Indian Navy ships will participate in the celebrations. During the visit, Prime Minister will hold talks with President of Seychelles, Dr. Patrick Hermione, and review the full spectrum of bilateral cooperation and exchange views on regional and international issues of mutual interest. Prime Minister will also address the National Assembly of Seychelles and interact with members of the Indian diaspora. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement will act as force multiplier to support the global economy. Addressing the India Global Forum UK-India Week in London yesterday, Mr. Goyal said free trade agreement with the United Kingdom is the most comprehensive agreement that India has entered into so far. The minister reached the UK on a three-day visit to review the preparedness of both countries for the implementation of the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, which will enter into force from 15th of next month. Union Home Minister Amit Shah will chair the 10th apex-level meeting of the Narco Coordination Centre in New Delhi today. The meeting, being organized by the Narcotics Control Bureau, will bring together representatives of central ministries, state governments, and drug law enforcement agencies to review and strengthen efforts to combat drug trafficking and drug abuse across the country. On the occasion, Mr. Shah will release the vision document on narcotics control 2026-2029, which has been prepared through extensive consultations with various stakeholders. National Testing Agency has opened a window for candidates to challenge the provisional answer keys for the NEET UG 2026 re-exam, which was held on the 21st of this month. In a social media post, the NTA announced that the answer keys are now available at www.neet.nta.in. Students can challenge questions for a fee of 200 rupees per question until the 28th of this month. This fee is fully refundable if the challenge is accepted. Further, the NTA has opened a portal for candidates who appeared for the re-exam to confirm and update their bank account details for fee refunds. The deadline to update bank details is the 30th of this month. Venezuela's National Assembly President Jorge Rodriguez announced that the death toll from two powerful earthquakes has risen to 188 people, with 1,520 others injured and 200 still trapped. Mr. Rodriguez stated that at least 2,927 families lost their homes after powerful back-to-back 7.2 and 7.5 magnitude earthquakes struck around 160 kilometers west of the capital Caracas. Meanwhile, Venezuela's acting president, Delcy Rodriguez, has declared a state of emergency. Acting President Rodriguez has acknowledged India's solidarity following the earthquakes, stating that it aligns with the spirit of cooperation between the people of India and Venezuela in times of difficulty. She welcomed PM Modi's remarks, in which he expressed condolences and India's willingness to support relief efforts in the wake of the earthquake's severe consequences. In ICC Women's T20 World Cup, India defeated Bangladesh by 5 wickets in a Group A clash in Manchester, England last night. And that is the end of this news bulletin.

सुबह की लाली माँ हमें याद दिलाती है उस जीवन की शक्ति को जो संघर्ष और पीड़ा के क्षणों में भी मौजूद रहती है। मृत्यु और जन्म, दुख और प्रसन्नता, निराशा और आशा के साथ सहज ही संवाद करती है और हम संवाद कर रहे हैं आपके साथ। जी हाँ, आप ही के अपने चैनल, जी हाँ, आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। स्वागत है आप सभी के साथ। सूरज के रथ को सुनहरी किरणें धीरे धीरे सुजज्जित करते हुए आज के नए दिन का आरंभ कर रही हैं, तो हम भी आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल पर। कार्यक्रम है भोर सुहानी, और भोर सुहानी लेकर आपके साथ हूँ, आप ही के पास हूँ, आप ही की दोस्त, आप ही की अपनी रूपा धवन। तो आइए उस प्रभु का भी स्मरण कर लें आज सुबह की शुरुआत के साथ।

साथियों, हर सुबह एक नया सूरज ये बताने के लिए निकलता है कि उजाले बांटने से कम नहीं होते। जी हाँ, प्रकृति भी तो हमें बहुत कुछ देती है, पर क्या हम प्रकृति को उतना दे पाते हैं जितना प्रकृति हमें देती है? देखिए, इंसानी जीवन है तो देन लेन का कार्यक्रम तो होता ही रहेगा। जी हाँ, अगर हमने किसी से कुछ लेना है तो हमें कुछ देना भी पड़ेगा, ये हमारा परम कर्तव्य है। तो क्यों ना कुछ ऐसे खुशी के लम्हों को बांटें जो बांटने से और भी दोगुने हो जाएं। अब मधुबन को देखिए ना, हमारे लिए कितनी खुशियां लेकर आता है। उसकी भीनी भीनी खुशबू, बगिया की ऐसी खुशबू जो हमारी अंतरात्मा तक